लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

न जब तुम यहाँ हो, मगर ऐसा तब हो न जब हो।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Not the system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: smack them back.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो हेलो, हु इज दिस?

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: I'm dead without you.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मोहतरम सामाईन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सुरुल हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफिकत से बाज आ जाएं, और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन, यहाँ कई बातों की वजाहत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोमन मर्दों और मोमन औरतों के अजर यकसा हैं। रोशनी उनके दाहिनी तरफ होगी यानी इनका आमाल नामा इनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, और रोशनी یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے

0: ताला क्या कहते हैं दे के वो चल रहे आगे। और अब उस पे जिम्मेदारी तो इस वक्त है ना, क्योंकि वो तो किंग है, और अब वो ही तो है जिसने लीड, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, पॉलिटिकल तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, सारा मुल्क को चलाना होता है, सारी चीज को लेके आगे जाना होता है, मगर एक तो उसने ही कराने होते हैं ना कि कौन कौन लियो ना सुबह बनने पे स्टेट मिनिस्टर के साथ मिलके। तो अभी ये शाम को चांसलर बॉल्स ने कहा है कि तीन पार्टियां हैं जिनको मैं नहीं दोबारा बुलाऊंगा, उसमें एक है इंग्लिश लिस्ट और एक एसएफ है और एल चाइना चीव है। तो वही देखा जाए तो वही सबको शुरू से पता था कि वो रेड ब्लॉक की पार्टीज हैं, तो उनको तो नहीं बुलाएगा। अब बाकी की पार्टियों को लेके आगे जाने की कोशिश करेगा, और वो भी मुश्किल ही लग रहा है कि वो मुश्किल होगा काफी, क्योंकि मौत मिसेस में जो है ना वो काफी जिद पड़ा हुआ है। उसने कहा है कल जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसमें, इसने यही कहा था कि खाली इकोनॉमी फुल चीक पे आप ना रहे, आप उइले निगे फुल चीक पे भी आए, और जब वो उइले निगे फुल चीक पे आएगा तो उसके अंदर वो ये भी रहना चाहते हैं कि जो उइले स्पीच था ना उसको बंदा स्कैनल करे ना खत्म ही कर दे, और उधर जो लास्ट लुक है वो उसको बताना चाहता है। तो फिर राजा साहब आप देख लेना कि क्लैश तो आ गया पहले ही, तो अब वो क्लैश की वजह से क्या है कि ये मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है कि ये शायद 2 4 दिन अगले जो नेगोशिएशन में ये क्लॉप्स ही ना हो जाए, तो दोबारा वापस जाना पड़े कॉन्ग के पास और तीसरी गोटे करनी पड़े। तो
1: तो ये
0: अब
1: क्या
0: देख
1: कभी ऐसे हो
0: रहे
1: सकता है कि ये जो तीन पार्टियों को नहीं ले रहा तो उसमें सोशल डेमोक्रेट इन तीन पार्टियों को छोड़कर चली जाएगी?
0: अरे साहब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, अब और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल एक ओपिनियन आई थी जिसके अंदर SF 20 से 23 मिनट ले रही थी और सुशैल तमकुत्सु पे पीछे जा रही थी। तो इसलिए सुशैल तमकुत्सु को पता है कि वो इस गवर्नमेंट में चले गए तो SF और उनकी सीटें ले जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस हुकूमत में जाएंगे, वो मेरे ख्याल से ज्यादा सोचेंगे फिर हम उपिशों में चले जाएं, और वो उपिशों में चले गए तो ये गवर्नमेंट बनी तो आप समझे कि नेक्स्ट समर तक दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चल नहीं सकते। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सिनारियो यही आना है कि रेड ब्लॉक जो है ना वो कि ये गेम ना खेल जाए कि वो अपनी गवर्नमेंट पेश कर दे लास्ट लोके का बैग ही। तो वही मैंने जो आप पिछले प्रोग्राम में सूरत हाल बताई थी कि फिर एक तरफ 87 हो जाएंगे एक तरफ 84 हो जाएंगे, और ये सूरत हाल मैंने ना किसी ने सुनी नहीं है हिस्ट्री में हुई हो पहले,
1: तो
0: तो कल
1: क्या
0: ही
1: मिला
0: हुई है।
1: लास्ट यूके को जो अब इतनी अफरा तफरी जो सियासी पड़ी हुई है, हुकूमत बन रही रही और जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी की जा रही है, तो इससे डेफिनेट जो है इसका तासर कोई इतना अच्छा तो नहीं जाता, या जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया?
0: नहीं राजा साहब वो तो नहीं जाता, क्योंकि राजा साहब ये देखे ना इसमें यही है कि बंदा देखे ना 70 से लेके तो आज तक और पिछली हिस्ट्री बंदा देखे तो ये बड़ी जीप चीज है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है। क्योंकि जैसे अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्कूट फॉल्स कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमी फुल चीक पे ही पहले स्टार्ट करना है, मगर कल जब वो आएगा मौत में तस्मित कल ही आना है उसने, और देखिएगा कि टेबल में मार नहीं सॉरी हफ्ते को आएगा वो, कल आएगा मुझे अब याद नहीं कि किस तरह इसने मीटिंग रखी है, मगर नेक्स्ट 2 2 डे 2 3 डेज में सारी पार्टी ने आना है, तो वो आएगा तो वो कहेगा कि मैंने उइले निगे फुल चीक पे बात करनी है, तो होगी ना फड्डा पड़ गया, क्योंकि वो इकोनॉमी पे बात करना चाहते हैं ये उइले निगे फुल चीक पे बात करना चाहते हैं, तो पड़ गया ना क्या कहते हैं मसला, कैसे आगे जाएंगे ये तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही। लास्ट लोग का ये था कि मैं प्रेशर करके अपनी मीरा का गैंग बना लूं और मैं वाह वाह वाह कर लूं क्योंकि मेरा है, मगर लास्ट में को ये भी सोचना चाहिए कि मैं नहीं होता, ये पार्लियामेंट ऐसी बन गई है कि इसमें सबको क्या कहते हैं कुछ के गिवन एंड टेकन है, एक ये नहीं कि तुम दरख्त में चढ़े रहो तो तुम नीचे ना हो। मैंने तो कभी सुना भी नहीं है कि बंदा निगोशिंग करता हो तो कह रहे हो कि यही कहे कि मैंने खाली खाऊंगा
1: सारे आप मेरे टोकरे में
0: खाऊंगा
1: डाल दो।
0: नहीं कि मैं खाऊंगा उनसे से बात करूंगा, ये नहीं होता। लास्ट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि सुशैल तुम कुछ इतनी पागल नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना पार्टी को भी जवाब देना है, और जब वो 3 इलेक्शन हार के आई हुई है तो फिर उसने भी सोच समझ के करना है कि उसने क्या करना है। तो इसीलिए मैं उसको सबको कहूंगा कि ये बड़ा मुश्किल है, और जो पहले दिन से बातें चाह रही हैं पहले दिन से एनालिसिस हो रहा है ये सजे होते आएगी खोंग की, ये मुझे लगता है जल्दी आएगी नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये नहीं ये मुश्किल है कि ये आगे जा सके।
1: दूसरा एक ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे थे कि केस चल रहा था कोई पर्दे के हवाले से, हाथ में लाने के हवाले से, स्कूलों का या कॉलेज का, जरा वजात कर दे क्या केस है ये।
0: हाँ, एक वाक्य हुआ था 2019 में जिसका मीडिया में और फेसबुक पे बड़े लोगों ने लिखा है। वो ये था कि दो पक्षी कहन थे, वो एमसलन में आए थे पक्षी के लिए, और दो थे और उनमें से एक ने, दोनों ने फिर केस शुरू में लड़ा। वो ये हुआ था कि फिर उनने, उनका वायल हुआ था, पक्षी का वायल हुआ, उसको उनने कहा था कि हमने हाथ नहीं मिलाना। और उसके बाद फिर जो स्कूल की लीडरशिप थी ना, इंस्पेक्टर, उसने बुला के कहा था कि आप हाथ मिलाएं या आपका हम कांटेक्ट कैंसिल कर देंगे जो आपकी पक्षी के। तो वो उसने फिर क्या कहते हैं, वो वाकया हो गया था। फिर ये हुआ था कि लीज थिंग्स ने, उन्होंने मिल के ना केस लड़ा था स्कूल के खिलाफ भी, और उन्होंने एक किस्म का कानून तक केस डाल दिया था लीज थिंग्स ने उन्होंने, और उन्होंने कह दिया था कि ये गलत है, ये इनको ऐसे नहीं तो करना चाहिए। और दोनों फीमेल जिनने केस डाला था उनके हक में केस दे दिया था। एमसन कमून ने यह डिसीशन नहीं थी एक्सेप्ट की, वो हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट में ने कहा था कि वो लड़कियां गलत हैं, और जो 25,000 उनको मिला हुआ था कि स्टेट नहीं लिस्ट उसने, उनमें वो उन्हें डिसमिस कर दिया था। इनमें से पे एक फीमेल थी जिसने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। सुप्रीम कोर्ट में फिर सख्त जज बैठे हैं, जिनमें से 6 ने कहा है कि हाथ देने पे बंदा जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर स्ट्रेटनिंग नहीं दी। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि एम्सलोन को मून के उसके अंदर कोई नहीं है, वो स्कूल की गलती थी। मगर इस केस का फैसला ये है कि आप किसी को जबरदस्ती हाथ देने से मजबूर नहीं कर सकते, और ये एक प्रिंसिपल बना है जिस पे बहुत सारा डिबेट चला है फेसबुक पे, क्योंकि टेस्टफॉल का पच्ची वाले कुछ के मेंबर्स ने लिखा है और कुछ और लोगों ने लिखा है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसमें हमारे मेयर ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि जो हो गया वो हो गया, मगर बंदा मजबूर नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखे ना, जब कोरोना हुआ था तो उस वक्त भी तो लोगों ने मना कर दिया था ना हाथ देना, तो ये बात तो फिर गलत है ना कि आप जबरदस्ती तो किसी से नहीं ना कर सकते कि कोई बंदा हाथ देना चाहता है कि नहीं। तो इस फैसले से यही बनता है कि बंदा आगे से ध्यान करेगा कि किसी से जबरदस्ती नहीं बंदा कर सकता।
1: अदनान, आज आपके इलाके में जो है कि बड़ी फेस्ट थी, काफ़ी लोग थे, काफ़ी तादाद में ख्वातीन और बच्चे भी थे, तो उसमें मेरी मुलाकात हुई अपना क्या नाम है जो आपके डिप्टी मेयर हैं उनसे भी मुलाकात हुई, उसके अलावा जुहेर से मुलाकात हुई, इरफान गिलानी से मुलाकात हुई, और भी शायद कोई थे जो है, तो उसके अलावा भी बड़े लोग थे, तो मैंने नहीं देखा, शायद आप मसरूफ थे कहीं।
0: नहीं, मैं आया था
1: आपके
0: शुरू में,
1: सबका जो है
0: उसके बाद
1: मेयर थे
0: मैं,
1: उनसे भी मुलाकात हुई।
0: हाँ, लास्ट काओ काओ जो है, मैं आया था शुरू में, और मैं शुरू में आया था और मैं शुरू के बाद निकल गया था। वो मैं थोड़ी देर के लिए आया था और थोड़ी देर के बाद मैं वहां से क्या कहते हैं रवाना हो गया था, क्योंकि मेरी कोई और मसरूफियत हो गई थी, तो मैं वहां चला गया था। मगर मैं वहां आया था और हो के गया हूँ। वो मस्जिद वालों ने एक क्या कहते हैं मेसे बनाया, अच्छी बात है, इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए, और कम्युनिटी के लिए क्या कहते हैं जितने ज्यादा प्रोग्राम करेंगे उतना ही क्या कहते हैं बेहतर होगा हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये प्रोग्राम जो होते हैं ये, और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम इस वक्त बड़े टारगेट में हैं, तो बेहतर बात यही है कि हम जितने मेयर होते हैं कमूनों के उनको बुलाएं प्रोग्राम्स में, उनको क्या कहते हैं इन्विटेशंस दें, उनको इनवाइट करें। जैसे इंशाल्लाह ताला 23 मई को हम लोग यहाँ पे मीना बाजार करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं बकरीद, और उसपे भी हमने इन्वाइट किया हुआ है। और मैं व्यूअर्स को ये भी कह दूं कि पाकिस्तानी एम्बेसी भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगी है, और उसके साथ और एम्बेसी वाले भी आ रहे हैं उस प्रोग्राम में। तो यही कल्चरली इवेंट्स होंगे जिससे हम अपने आप को प्रमोट कर सकेंगे और हम लोगों को बता सकेंगे कि हम क्या हैं। क्योंकि राजा साहब, एक बड़ी जरूरी चीज है कि जैसे मैंने आपको और बड़े लोगों ने, मैं जब आज वहां प्रोग्राम में गया हूँ, बड़े लोगों ने मुझे ये सवाल, कुछ लोग करते भी हैं और आवाज भी पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम था कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनेगा। और इसको मैंने कहा, देखिए एक्सपीरियंस होता है, हमें पता था कि इस साल के इलेक्शन के मेन इश्यूज क्या आने हैं, और ये नहीं होता कि हम हम एक दो दिन में करते हैं, ये हमारी बहुत अरसे की तैयारी होती है और ये हम पूरा देख के चलते हैं कि कैसे है। और हो सकता है कि कमिंग डेज में मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि मैं खुद इस वक्त सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मेरा कदम क्या होने वाला, क्या नहीं होना, और इस पे मेरा बड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए जरा थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मसरूफियत दूसरी तरफ है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो जो फ्यूचर के लिए हैं और उन पे हम काम कर रहे हैं, और कम दे में उन पे फिर हम बताएंगे कि हमने क्या करना।
1: मतलब धमाका तो नहीं होने जा रहा?
0: नहीं, धमाका तो नहीं हम करेंगे अभी, क्योंकि धमाके काफी हो चुके हैं इस साल और 4-5 मंथ से हो रहे हैं। तो अब थोड़ा क्या कहते हैं समर भी आ रहा है, तो समर वेकेशन है, तो उसमें क्या कहते हैं देखेंगे कि क्या, और फ्यूचर में क्या होता है ये तो अब डिसाइड तो ऐसे ही करना होता है ना, कि बंदे ने सोच समझ के कुछ फैसले करने होते हैं। इस वक्त तो हमारे कुछ टफ फैसले आने हैं कम्यून के अंदर भी, तो उन पर भी हम गौर कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है।
1: अदनान, आखिर में आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपनी पब्लिक को, सियासतदानों को, कम्यून्स को जो है वो क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहूंगा कि हम जितना काम मिलजुल के करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे उतनी हमारे लिए फायदा है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा दें कि हमारे बच्चे देखें और हमें फॉलो करें और उस चीज पे चलें। जैसे मेरी कल बच्ची 9वीं क्लास खत्म हुई है, अब वोकेशन में जा रही है, तो वो जब देखती है ना कि एक प्लेटफॉर्म आगे आ रहा है तो बड़ी खुश होती है। इसी तरह मैं कहूंगा कि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने और सबके लिए रोल मॉडल बने। इंशाल्लाह
1: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे संडे को भी बात होगी।
0: ताला पे ठीक है राजा साहब, अल्लाह
1: ओके भाई, खुदा
0: हाफिज।
1: हाफिज। समान नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो आपको ताज़ा तरीन मालूमात दे रहे थे, और आने वाले दिनों के बारे में भी आपको बहुत सारे इशारे जो उन्होंने कर दिए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। समय नाज़रीन, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए इधर आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामईन नाज़रीन, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, वेबसाइट्स को देखते रहते हैं, आप पाक अम्बेसी की वेबसाइट को भी देखते रहते हैं, तो ये मार्का हक का जो आपने लोगो देखा होगा, टाइटल देखा होगा, आज 10 तारीख के हवाले से तो बातें चल रही हैं प्रोग्राम के हवाले से, तो हमने कहा क्यों ना हम अपने सफ़ीर मोहतरम से पूछें वो अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे। शुएब सरवर साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मोहतरम अम्बेसडर साहब, आज मार्का हक जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, मनाया जा रहा है पाकिस्तान अम्बेसी में, दावते आम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
2: जी आज दोपहर को अम्बेसी में 2 बजे जी इवेंट है, और जो 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पे जो हमला किया था और जिस तरह हमने उसका जवाब दिया, आज हम उसका एक सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी पाकिस्तान की मुसल्ला फौज को, पाकिस्तान के अवाम को और इदारों को और लीडरशिप को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जिस तरह कौम ने यकजा होकर साल पहले दुश्मन के जो नापाक अजायम को नाकाम बनाया था, तो उसके सिलसिले में एक इवेंट है और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी डेनमार्क में रहने वाले हैं वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और उसके अलावा मुझे ये पता लगा है कि जो पाकिस्तानी एक कम्युनिटी की तरफ से कार रैली भी है एक, और वो भी इन द एंड वो कंक्लूड अम्बेसी में करेंगे, तो मैं उनको भी वहां वेलकम करूंगा।
1: बिल्कुल सरवर साहब, ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग जोशो खरोश से इस पर आना चाहते हैं, तो ये किसी मखसूस के लिए दावत तो नहीं है ना, ये दावत आम है ना?
2: जी जी, तमाम लोगों के लिए दावत है, जो तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं डेनमार्क में वो आए और शिरकत करें।
1: सफीर मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम से आपने हमारे सामाइन को मुखातिब किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू राजा साहब।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे सफीर पाकिस्तान शुएब सरवर साहब, जिन्होंने बिल्कुल ओपन पैगाम दिया, ये दावते आम है, रैली का भी उन्होंने जिक्र किया, रैली को वेलकम भी करेंगे और 2 बजे अम्बेसी में भी जो है वो आपको वेलकम करेंगे, तो ये सारा मिला जुला जो ये प्रोग्राम है ये सब के लिए, ये सब का प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है, ये किसी मखसूस बंदे का प्रोग्राम नहीं, ये किसी मखसूस किसी तंजीम का प्रोग्राम नहीं, ये पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, ये फौज पाकिस्तान से हजारे यकजहती का प्रोग्राम, ये मार्का हक का प्रोग्राम है। सामान्य नाज़रीन, आपको जोगदार जोग जो है वो अम्बेसी में जाना चाहिए, रैली में शामिल होना चाहिए, हमारे साथ साथ रहिएगा।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम है आज का, और आपको पता है कि 10 मई के हवाले से मार्का हक का जो प्रोग्राम आज पाकिस्तान अम्बेसी में हो रहा है, पाकिस्तान अम्बेसी जो है वेलकम करेगी मेहमानों को, और ये दावत आम है, तो हमने कहा पूछें जो लीडरान लोग होते हैं उनकी क्या सोच है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथी चौधरी शौकत साहब, जो कि मशहूर बिजनेसमैन है डेनमार्क में, समाजी कारकुन भी हैं और सरपरस्त आला भी जो हैं आफ लीग के यहाँ डेनमार्क में, और पुराने मुस्लिम लीग के हैं और 26-28 साल सदर भी रहे, तो हमने कहा ये बेहतर इस बारे में बात कर सकते हैं मार्का हक के मुतल्लिक। तो चौधरी साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को और मेरे सुनने वाले सामाईन की खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम।
1: चौधरी साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांधी, आपका बिजनेस कम्युनिटी से भी तल्लक है और आपका समाजी कारकुन भी हैं आप और सरपरस्ते आला भी हैं आप जो है मुस्लिम लीग काफ के यहाँ डेनमार्क में, तो आप क्या मार्के हक के हवाले से क्या पैगाम देंगे?
4: जी राज साहब, इंशाल्लाह जो है ना, हम ये जो है ना मार्का हक है जो आज दिन जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, पाकिस्तान की फौज ने एक ऐसा कारनामा अरसे दराज के बाद जो है ना अदा जो है ना मार्का हक जिसका नाम है वो किया और जो पूरे पाकिस्तान का सर जो है बुलंद कर दिया, अवाम का भी फौज का भी जितने भी सारे हम जो है ना पाकिस्तानी है इनके लिए एक बड़े एजाज का दिन है, आज हमें खुशी मनानी चाहिए और इंशाल्लाह हम जो है ना डेनमार्क में एक रैली की शक्ल में पाकिस्तान अम्बेसी में जाएंगे और ये दिन मना के, क्योंकि हम ये दिन जो है ना कभी भी भूलेंगे नहीं जिंदगी में इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारी फौज ने किरदार अदा किया, हमारी क्यादत ने जो है ना जो कारनामा अदा किया, ये सभी सभी के नाम जाता है ये जो है ना। और दूसरा ये हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम इस दिन को कामयाब करें और खुशी मनाएं इस तरीके से कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी एक कौम है और पाकिस्तानी जो है ना एक दूसरे को पाकिस्तानी के पाकिस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनकी कामयाबी के लिए हर वक्त दुआगो होते हैं, दुआएं मांगते हैं। हमारी माएं बहनें घर बैठे पाकिस्तान की फौज के लिए दुआगो हैं और दुआएं मांगती हैं कि जो हमारे बच्चे हमारे भाई जो महाज पे खड़े होके पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए जो हमेशा से कुर्बानी देते रहे हैं और लेकिन अब तो ये जो है ना अब जो निकल गया ये पाकिस्तान वाला लफज, अब तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आदत करेगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है ना अपनी जो है ना अपने मुल्क की जो हफाजत की जो है ना जिम्मेदारी देने को तैयार है। काफी लोग काफी मुल्क जो है ना एग्रीमेंट भी कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी इजाज़ की बात है, हमारी फौज के लिए इजाज़ की बात है कि जो लोग हम पे इतमाद कर रहे हैं कि जो अगर कोई तहफ़ दे सकता है तो पाकिस्तान दे सकता है हमें और पाकिस्तानी फौज दे सकती है। तो हम इंशाल्लाह आज रैली की शक्ल में ब्यासा स्वाई पे गौन फैसल है फेम वाई उधर से कारों में ये इंशाल्लाह जोश जज्बे से हम आएंगे
1: रैली में आए क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वेलकम करें एम्बेसी में।
4: जी बिल्कुल, और एम्बेसी ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, उन्होंने भी लोगों को दावत आम दी है और पाकिस्तानी लोगों को बाकी लोगों को भी बुलाया है कि आप आए एम्बेसी में आके हमारे साथ ये दिन मनाएं। तो इंशाल्लाह राजा साहब हम बिल्कुल भरपूर तरीके से ये दिन को मनाएंगे, हमारे बच्चे भी हमारी बहनें भी हम सब भाई भी मिल के पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं और इंशाल्लाह हमेशा दुआ करते रहेंगे और अपना पूरा किरदार अदा करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, हम यही एक ही नारा लगाएंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चलो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
1: सामान्य नाज़रीन ये थे चौधरी शौकत साहब जो कि यान डेनमार्क के मशहूर बिजनेसमैन हैं और सरपरस्ते आला भी हैं, उनकी बात आपने सुनी। उन्होंने पाक फौज के हवाले से मार्का हक के हवाले से अपना मैसेज जो है वो दिया, लाइव मैसेज दिया। तो कोई भी मैसेज देना चाहे तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है। समझ चौके आज स्पेशल प्रोग्राम है तो हर आदमी को अपनी हक है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुतफिक होना जरूरी नहीं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लाइव लेकर आता रहा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। यहाँ डेनमार्क में दिन के 11:20 हो चुके हैं और पाकिस्तान में 2:20 हो चुके हैं। सामिन नाज़रीन, आपको पता है तारीख से काम है पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसकी बुनियाद शहजादा उस्मान साहब ने रखी, इसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में पूरे यूरोप में, तो उन्होंने पिछले दिनों मुतवातर जो रैलियाँ निकाल रहे हैं और सब आखिर में जब वो कराची गए तो बहुत बड़ी रैली थी उनकी कराची में। आज भी हमें सुनने में मिल रहा है कि आज भी वो कराची में रैली निकालेंगे, तो हमने कहा क्यों ना शहजादा उस्मान साहब पूछा जाए। शहजादा उस्मान साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: शहजादा साहब, जरा तफसील बताएं, आज 10 तारीख है और आज आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे डेनमार्क के लोगों को?
2: साहब, आज पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये 10 मई मरका हक जो है, ये 1965 की जंग के बाद सबसे बड़ा मरका है और हम सब समझ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तानी कौम या मुसलमान जो उम्मत मुसलमान है वो दो ईदें मनाती थी, अब वो तीन मनाया करेगी। इस 10 मई को भी एक तीसरी ईद का जो है ना जश्न पूरी दुनिया में जैसे मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा आगे क्यामत तक, क्योंकि इस दिन को पाकिस्तान ने एक जो एशिया का गुंडा बन चुका हुआ था मोदी, उसका गरूर तोड़ के जमीन के अंदर घुसेड़ा। इस दिन 10 मई के महीने में 2025 में जो उसने पहलगाम का एक ड्रामा निचाया और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करनी शुरू कर दी, पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया, और जिस पर मैं सलाम पेश करता हूं, पाक फौज ने सब्र का तहमल का मुजाहरा करते हुए पहले दुनिया को बताया कि ये इसका मकरू चेहरा है, ये पाकिस्तान के ऊपर प्रोपोगंडा कर रहा है। और उसके बाद फिर जब इंडिया बाज नहीं आया तो फिर DGISPR ने जिस तरह कहा था कि जब हम करेंगे तो दुनिया बताएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही हुआ कि पाकिस्तान ने उनके 5 राफेल तैयारों को गिराया और फतह मिसाइलों ने इंडिया की दरो दीवार जो है वो खुला के रख दिए। और आज हम इस दिन के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं उस अजीम कायद, उस उम्मत मुसलमान के लीडर को, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब को, जिनकी क्यादत में ये सब कुछ हुआ है। और हम समझते हैं कि आज का दिन जितना भी जोश व जज्बे से मनाया जाए वो कम है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया कि इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम एक तहरीक का जो है वो वजूद अपना चुकी है पूरे यूरोप में, बरतानिया में, और अब पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने अपने चैप्टर बनाने शुरू कर दिए हैं फोरम ने। कराची में हमने हालिया अभी बहुत बड़ी 26 अप्रैल को रैली निकाली, सैकड़ों गाड़ियां और एक कन्वेंशन किया गया जिसमें बाजाब्ता तौर पर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान से हमने उधर बुनियाद रखी है, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह गुजर खान के अंदर, खारियां के अंदर, और ये सिलसिला जो है वो सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर जो है वो इस तंजीम को, गैर सियासी फोरम को, इस तहरीक को लेके जाएंगे, और इसका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सरबुलंदी और फौजे पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होना। क्योंकि अब हमें वक्त आ गया राजे साहब कि हम लोग जो है वो सियासी जमातों से बालातर होकर जो है वो पाकिस्तान का साथ दे, और ये इस्तेकाम पाकिस्तान का भी यही पैगाम है, यही उसकी जमात है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सरबुलंदी और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए और मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए और मोदी का मकरू चेहरा दुनिया में बेनकाब करने के लिए इंशाल्लाह ताला ये जदोजहद जो है वो दियार गैर में भी जारी और सारी है, और अब पाकिस्तान के अंदर भी नौजवानों को शऊर देने के लिए, नौजवानों को सबज हलाली परचम के नीचे इकट्ठा करने के लिए इंशाल्लाह ताला अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सर,
1: मेरा आखिरी सवाल है शहजादा उस्मान साहब आपसे, आपने पहले यूरोप को बेस बनाया, स्पेन से बुनियाद रखी, फिर आगे चले स्कैंडिनेविया की तरफ आए, आगे बढ़ते रहे, अब आपने बेस अपना पाकिस्तान को बनाया और आज प्रोग्राम आपका करने होने जा रहा है कराची में, तो लोग पाक अफवाज के मुतल्लिक और आसिफ मुनीर साहब के मुतल्लिक क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल जो है हमारे?
2: सर, इस वक्त 99% लोग जो है वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हाफिज सैयद आसिफ मुनीर के शाना बिशाना खड़े हैं, 1% वो लोग हैं जो इंडियन रा के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के पाकिस्तान का लबादा तो ओढ़ा हुआ है लेकिन अंदर से जो है मोदी की जुबान बोलते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो जो 1% लोग हैं उनको भी जमीन दोज हम कर देंगे, उनका प्रोपोगंडा मीडिया के ऊपर भी हम तोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला यूरोप के अंदर भी तोड़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी जो वो हमारी सफों के अंदर वो अपनी काली भेड़े खड़ी कर देते हैं उनको भी बेनकाब करेंगे और कौम के सामने लेके आएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ इस्तेकामे पाकिस्तान ओवरसीज फोरम की टीम को, स्पेन के अंदर बहुत बड़ी रैली और सेमिनार हो रहा है, इसी तरह यूनान में इस्तेकामे पाकिस्तान ओवरसीज फोरम का जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है कराची के अंदर आज फिर जो है वो कराची चैप्टर जो है वो रैली निकालने जा रहा है। तो ये सिलसिला ये मई का महीना जारी और सारी रहेगा, बेल्जियम में भी प्रोग्राम होगा, फ्रांस में भी होगा और इटली में भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे हम।
1: शहजादा उस्मान साहब, आज डेनमार्क में भी रैली निकल रही है, तो रैली का इख्तिताम जो है पाकिस्तान एम्बेसी के सामने होगा, अंदर होगा, सफीरे मोहतरम उनको वेलकम करेंगे, आप क्या मैसेज देंगे?
2: सर बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो डेनमार्क में रैली निकल रही है, जो भी निकाल रहे हैं तमाम लोगों को, देखे जी हर बंदे का फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का परचम थाम के बाहर निकले, वो चाहे किसी जमात से ताल्लुक है चाहे किसी और फोरम से ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए काम करे और आपस में मोहब्बतें बांटे, आपस लोगों को इकट्ठा करके एक मतलब एक जान होकर जो है वो सबज हलाली परचम के नीचे सब इकट्ठे हो, और कोई भी पाकिस्तान का नाम लेता है हम उसे सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक है किसी भी फोरम से ताल्लुक है, लेकिन खालिस्तान वो अगर पाकिस्तान के अगर वो लबादा ओढ़कर वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम तो वो उसकी मुखालफत हम करते हैं। सर
1: शहजादा उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपने कानून कायदे का भी ख्याल रखिएगा,
2: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह सर।
1: सामान्य नाज़रीन ये थे शहजादा उस्मान साहब जो कि कराची से बराह रास्त हमारे साथ बात कर रहे थे, आज वो रैली निकालने जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली वो पहले भी निकाल चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में ये रैलियाँ निकाल रहे हैं। सामान्य नाज़रीन हमारा किसी से मुत्तफ़िक़ करना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपना मैसेज देना चाहता है उसके लिए आधार आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। हमने सुबह इंट्रो में भी बात की थी। सामने इस वक्त हमारे साथ सोशल वर्कर, साबका सिटी काउंसलर और तजिया नगार, एनालाइज भी करती रहती है, एक्टिविस्ट भी हैं, लुबना इलाही साहबा, मल्टी किस्म का आमन से प्रोग्राम करते रहते हैं, मल्टी किस्म की हमें इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, सामान्य नाज़रीन हमारा वादा है हम आपसे बात करते हैं। तो इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद है लुबना इलाही साहबा। लुबना, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी शुक्रिया राय साहब, और आपके सारे मिलने वालों की शुक्र में सलाम हाजिर है।
1: और लुबना, हमें पता है कि हमारे सारे चाहने वाले, हमारे सारे लिसनर, हमारे सारे वो थिंक टैंक या जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं, सारे बीमार हैं। मुजीब साहब बीमार हो गए, आप बीमार होगी, बेग साहब बीमार हो गए, तो अल्लाह करे सबको सेहत हो। मौसम तो बड़ा अच्छा, अब आपकी तबीयत कैसी है?
2: जी आगे से बेहतर है, लेकिन मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो मतलब जो कुछ भी है वो चेहरे पे नजर आता है, नील वगैरह है इस तरह कुछ ना, लेकिन बाकी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: हमारे में तो यही बीमारी कहा जाता है, कोई भी उपाय उंगली को तकलीफ कहते हैं बीमार हैं जी आज।
2: लेकिन नहीं, मैं तो मेरा गालबन 16 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, फ्राइडे का दिन था, तो मंडे को मैं काम पे थी। अब आपको पता मैं नहीं घर पे रह सकती अनलेस के मेरी टांग बाजू टूटी हो।
1: अल्लाह ना करे जी। चले लुबना इलाही साहबा, आप हमें बताएं कि 1 मई गुजर गई, आपका 1 मई कैसे गुजरा? आज साफियों का दिन है, 3 मई है, आप क्या कहेंगी?
2: 1 मई तो जिन लोगों का दिन है वो मुझे नजर नहीं आते डेनिश माशरे में, वो एग्जिस्ट नहीं करते। जिन लोगों की पार्टी थी यानी के सोशल डेमोक्रेट, उनमें जो औसतन उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, औसतन उनके पास कोई ना कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, जिन लोगों के पास तालीम का फकदान था और जिसके लिए ट्रेड यूनियंस बनी थी, वो लोग तो है नहीं। तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्या मना रहे हैं। तो बहरहाल जो ट्रेड यूनियंस हैं वो हमारी बेहतरीन वकील है, उनका मेंबर जरूर बनना चाहिए, बल्कि सबसे सस्ते वकील है, उसमें आपको पैसे की छूट भी मिल जाती है जो उन्हें आप देते हैं उनकी मेंबरशिप के, गालबन उसके आधे पैसे आपको टैक्स की रिडक्शन में मिल जाते हैं। तो यह है कि उसका मेंबर जरूर बनना चाहिए, वही हमारे लिए मुज़ाकरात करते हैं, हर साल तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, जो ये बच्चे पैदा होने की सूरत में छुट्टियां होती हैं वो कितनी होनी चाहिए, इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें जो नहीं है। तो एक तरह से हमारे वो मुहाफिज हैं ट्रेड यूनियन वाले, तो बस उनके आसार हैं, क्योंकि नए बच्चे तो ना मेंबर बनना चाहते हैं ना उनकी समझ में आता है। तो जो जिसको डेनिश में उफा लियत कहते हैं, उनकी यानी बगैर किसी डिग्री के, तो उनकी वो उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी काम भी करते हैं लेकिन वो ट्रेड यूनियंस के मेंबर नहीं है, वो सिर्फ जिसको एक ऐसा कहते हैं यानी बेरोजगारी की सूरत में जो नहीं है वो आपको उनका अलाउंस मिलता है, वो आपको देते हैं आबस लूसिज ऑन स्टूल से, लेकिन जो मेन चीज है वो है आपकी सॉफ ऑइनिंग, जो कि आपकी वकील कर वकालत करती है आवस माकिल यानी मंडी है मुशक्कत। तो ये है, बाकी आप सब लोग को सहाफत का दिन मुबारक हो, ये भी एक अपनी हिस्ट्री है। तो मुझे आपसे पूछना चाहिए आपने आज का दिन कैसे मनाया?
1: आज का दिन मुझे इसी तरह मनाया, बातें करते हुए, सारा दिन जो है वो बातें करते करते गुजर गया, लोगों ने जो अप्रिशिएट भी किया, बातें भी की, अपने दिल के हाल भी सुनाए। उसके बाद आपको पता है कि सियासत भी छोटी मोटी, चूंकि ये लोकल प्रोग्राम होता है तो फिर लोकल बातें डेफिनेट होती हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो आज जो काफ की टीम भी थी, आपके राजा फराज साहब भी जो है वो सदर बन गए, वो भी मौजूद थे, बाकी लोग भी, मुजीब साहब भी थे, तो इसी तरह मिला जुला ये प्रोग्राम था, बात होती रही, ईशान से बात हुई और दूसरे लोगों से भी बात हुई, हुकूमत की बात हुई कि हुकूमत तो तकरीबन अब तय हो गई है कि लास्ट यूके और मेहते के अलावा जो है वो ये दोनों ही मेच्योर लगते हैं, कि इसके अलावा तीसरा बड़ा लीडर कोई नज़र नहीं आ रहा था कि जो हुकूमत बनाने की तरफ, ज़ाहिर है साहब ने कोशिश तो की है, वो नहीं बना सके, एंड पे जाके वो ही हुआ जो सब कह रहे थे। आप क्या कहेंगी?
2: नहीं मैं तो खुद ये कह रही थी, लेकिन मैं साथ ये भी कहती हूँ ये चलेगी नहीं, हमें जल्दी नया इलेक्शन होगा, ये चल नहीं सकती ना, क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट जो नहीं है किस हद तक कम्प्रोमाइज कर लेंगे। अभी वो मेरे फर्गसन कह रही थी अपनी गवर्नमेंट फिलिप हाकम से, उसको किसी ने इंटरव्यू जस्ट छोटा सा लिया कि भी आपके मुतालबात तो ये है, तो फिर आप कैसे करेंगी? तो वो कह रही थी नहीं हम देखें किस हद तक कंप्रोमाइज कर सकते हैं ना, उसने 10 दफा कहा किस हद तक। तो जो है मैं बहरहाल मेरी सियासी बसीरत कहती है कि ये 4 साल का टर्नोल नहीं निकालेगी हुकूमत, सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन यू नेवर नो।
1: लेकिन उनकी मुलाकात भी हुई है लास्ट ल्यूके की और मेहते की, जो 6-7 घंटे उन्होंने मेरे ख्याल की मुलाकात की, बातें तो तय कर ली होंगी।
2: लेकिन बातें तो तय कर ली होंगी, लेकिन क्या वो खासकर स्पेशली जो सोशल डेमोक्रेट की पता नहीं कितनी उनके हलके हैं, क्या चीजें हैं, वो भी उनसे पूछ के तो नहीं ना कर रही। जो कुछ भी करेगी वो भेजेगी उधर के, जी यही है मैंने किया है। देखे वो उन कितना बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अब ये तो नहीं कि हुकूमत के चक्कर में उस जो मेंबर है सोशल डेमोक्रेट के, वो इसका जो सोशल डेमोक्रेट का अंदरूनी ढांचा है वो इसको तोड़ने की इजाजत देंगे, आगे इसने बड़े बुलडोजर फेंके
1: हैं। चलें देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। तो
2: हाँ,
1: आपकी जमात या आपकी जमात क्या कर रही है, वो भी हुकूमती हिस्सा बनने जा रही है।
2: चलें जी, वो पाकिस्तान है वहाँ कुछ भी हो सकता है, जब कुछ होगा तो फिर देखी जाएगी, अभी तो कुछ नहीं पता। इन पे अभी तो जो कौन लाओ है और जो किंग या क्वीन की तरफ से वो एक टाइम होता है उसके अंदर इन्होंने करना है, मेन तो इनका ये इश्यू है ना, लेकिन ये चल नहीं सकते, इनकी दिलचस्पियां इतनी मुख्तलिफ है, सियासी दिलचस्पियां।
1: आप देखिए किसी पार्टी की अपनी उस तरह की सियासत जो है वो रही नहीं, मुफादात के लिए जहां जहां मुफाद होता है।
2: मुझे ये बताएं लास्ट लुके जो नहीं है वक्त के साथ काफी मोल्ड हो चुका है, वो गैर मुल्कियों के फलाह बहबूद के लिए और पता नहीं क्या क्या उनको तहसीन पेश करता है क्या, और वो कहते हैं जी इनका इनकी शाहराग पकड़ लो, यही एक एग्जाम्पल ले ले, हाउ कम वो कैसे इकट्ठा काम कर सकते।
1: चले अच्छे की तो रखनी चाहिए।
2: ये जो कुरान लाओ बना ना, ये जो कुरान लाओ बना, मैं लास को आपसे नहीं जानती, मैं लास को पता नहीं कितने सालों से जानती हूँ, लेकिन मैं महसूस करती हूँ जिस तरह मेटे एक यंग सी लड़की थी और हम इसको पता नहीं कि मैं खुद उस वक्त सोशल डेमोक्रेट थी, लेकिन वक्त के साथ ये इतनी अजीबोगरीब इंसानी दुश्मनी टाइप की बातें करती है। इसी तरह इसके ऑपोजिट जो नहीं है लास्ट लुके, जब अपना उसमें शुरू में होता था पता नहीं क्या क्या बातें करता था, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि वो बताता है कि जो महकमा सेहत है अगर सारे गैर मुल्की चले जाए तो हम क्या करेंगे, वो बताता है कि ये पढ़े लिखे लोग हमने इनके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं किया, इनका ख्याल रखो, इनसे बदतमीजी से ना पेश आओ। और जब से फिर जब फॉरन मिनिस्टर था, अगर ये बंदा ना होता राजा साहब तो हमारा वो जो जिसको कुरान लॉ कहते हैं वो कभी भी ना बनता, वो कभी भी ना बनता। अकेली इसने मुसलमानों के लिए ऐसी एक चीज की है, मैं जाती तौर पे इसकी बहुत शुक्र गुजार हूँ। जब ये हुआ था मैंने इसको चॉकलेट का एक डब्बा और एक फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था और ऐसे थैंक यू कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने डेनमार्क को इसमें खाना जंगी करने से बचा लिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे यही होना था, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बेवकूफ नहीं, तो फिर एक मुल्क में दो तरह के लोग तो नहीं ना रह सकते। तो इसने वो पंजाबी नहीं किया और ठप्पिया सारा कि जी जदों मर्जी कह दो जी असी तो बस अखबार इसको जलाना है, हमारी जो मजहबी किताब है। तो लेकिन है कि माली दिलचस्पियां इनकी बहुत मुख्तलिफ हैं, जैसे टैक्स है, टैक्स की क्या होनी चाहिए, जिन लोगों के जाती मकान है उनको जो नहीं है वो वेंस्ट्रा कहती है, या है तो ये वेंस्ट्रा की बातें ही करता है ना, लास्ट लुके ये कहता है कि इन्हें ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, वो कहते हैं सोशल डेमोक्रेट वाले कि जी इनको जब ये मकान बेचते हैं तो ये इनका प्रॉफिट है, इनको उसके ऊपर भी टैक्स लेना चाहिए। तो मैं तो खुद हैरान हूँ, लेकिन मुझे समझ आती है क्यों, क्योंकि इन्होंने वो जो डेड लाइन है उसको बरकरार रखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो
1: अच्छा, मतलब अंदर से बेईमानी पे चल रहे हैं,
2: मैं समझने से कासिर हूँ ना, क्योंकि इनकी जो जैसे कि वो उसने इलेक्शन इतना खराब होने के बावजूद भी वो अभी भी कहती है सामनिंग है उलनिंग लॉ, वो डायरेक्ट लॉ नाम मुसलमान नहीं लेती, वो साफ
1: तो वो नाम लेती है तो मानते हैं, तो इसका मतलब रेडिकल भी मानती है साथ दूसरी तादी जमाते भी मानती हैं। फिर
2: नहीं, आप रेडिकल ने आज तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया के जी जो लोग
1: हुकूमत में चला जाना बयान तो एक ही बात है।
2: नहीं नहीं नहीं राज साहब, बहुत फर्क है, कैसे एक बयात है, हम अपने चंद वो लेके क्या करेंगे, लेकिन जब आप अंदर होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस कराते हैं ना। मैं इन दो लोगों की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि जाहिर है कि जब हमारा वक्त आएगा या बातचीत होगी तो हम तो अपना मौकफ लेके आएंगे ना, हम इसके साथ कुछ चलेंगे। तो ये है कि मेरा ख्याल नहीं कि ये 2 साल गुजरे ये इलेक्शन दोबारा होगा।
1: चले जी, दोबारा ना ही हो तो अच्छा है, अखराज होते हैं हुकूमत के स्टेट के।
2: नहीं हो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं है वो खाइफ हैं कि हमने इस जगह वोट क्यों दिया, हम ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते।
1: ये बात भी काफी हद तक आपकी ठीक है
2: लेकिन है कि चले, मेरी तो दुआ है कि जी जल्द से जल्द
1: चले जी। हम लुबना इलाही साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: ओके थैंक यू जी।
1: सामान नाजरीन ये थी लुबना इलाही साहब जो कि अपना नुकता नजर पेश कर रही थी। हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है, कोई राय देना चाहता है उसके लिए दारा आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। सुबह जब हमने आपको इंट्रो में बताया था आज हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है 10/5/2026 का। समय नाज़रीन, इस वक्त 5:20 हो चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मियां मुनीर अहमद साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, अक्सर आप इनको सुनते रहते हैं, और ये आजकल इस रैली को जो है वो लीड कर रहे थे, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान सोसाइटी के कायम काम सदर भी हैं। उन्होंने रैली को लीड किया, इनकी क़यादत में रैली चली और रैली पाकिस्तान एम्बेसी में आई। आगे से हम साहब ने उनको रिसीव किया, एम्बेसडर साहब भी वहाँ थे, एम्बेसी में आए, और उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मियां साहब की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। मियां साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज का जो मार का हक का प्रोग्राम था उस पर आप क्या कहेंगे?
2: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज साहब, शुक्रिया, शुक्रिया आपने मौका दिया। देखें, आज का दिन जो है हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा बड़ा फख्र का दिन है, और ये वो दिन है जब हिंदुस्तान की तरफ से एक ऐसी हरकत हुई जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक फौज ने, हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो अस्करी और सियासी क्यादत थी, उन्होंने ऐसे एक सही टाइम पर सही फैसला कर दुश्मन को इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब उसकी कई नस्लें जो हैं ये दिन जो है ना इसे इसके बारे में सोचती रहेंगी। बाकी ये दिन यहाँ मनाने का मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी ने, 25-26 करोड़ पाकिस्तानी ने वहाँ ये दिन मनाया। दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानी हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए हर लम्हे अपने उनके साथ हैं। तो यहाँ ये हमने पाकिस्तान सोसाइटी ने एक्चुअली कोई 1.5 माह से ये प्रोग्राम जो है हमारा प्लान था मनाने का, और इस तरह एक रैली की शक्ल में कार रैली हम, यानी कि पिछले साल भी किया था, आप भी साथ थे, तो आज भी माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हम अपने कार रैली लेकर गए। वहाँ एक बड़ी अच्छी गैदरिंग थी, सफीर मोहतरम ने और उनकी टीम ने, अली स्टार सब ने, आप भी थे, सभी थे उधर, एक अच्छा मतलब एक वेलकम हुआ। और वहाँ जो भी अपने मुल्क और कौम के लिए अपने अपने जज्बात का इजहार किया गया, अपने अपने तरफ से दुआ की गई, अपने अपनी जगह हम एक मैसेज लेकर आए एज ए पाकिस्तानी, तो वो इंशाल्लाह ये वो चीजें हैं जो हमें जिंदा कौमों में होनी चाहिए और अपना अपना इसमें फरीजा अदा करना चाहिए। और आप राजा साहब, बिल्कुल आपकी अपनी जगह एक, आप भी हमेशा पाकिस्तान, पाक फौज, हम सब के लिए एक, आप भी हमेशा एफर्ट करते हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक बहुत यादगार दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए रहेगा, क्योंकि हमसे सात दुगना बड़ा जो मुल्क है हिंदुस्तान, उसने एक ऐसी हरकत की थी जो दुश्मन है हमारा शुरू से, लेकिन इस दफा उसने कुछ चीजें एक ऐसे प्लान से की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे पसपा हुई कि वो अब कई साल तक सोचने पर मजबूर है कि आइंदा उसे किस तरह मतलब चीजों को लेकर चलना है, कुछ करना है तो फिर कितनी बड़ी मार पड़ेगी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो है, हमारी पाक फौज ने, हमारे जैसे मैंने कहा हमारी हुकूमत ने, और इसी तरह हर जगह हमारे पाकिस्तानियों ने दियार गैर में जिधर भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपने जज्बात का इजहार किया, और जो उन्होंने प्रैक्टिकली चीजें करनी थी उन्होंने करके दिखाया। जी राज
1: मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है मसरूफ है, आप जो है टेक्सा ब्रांच के सदर भी रहे और आज भी लगता है कोई मीटिंग आपकी टेक्सा ब्रांच की। तो मियां साहब, ये इलेक्शन का तो एक साल पहले अभी हो गया, एक साल?
2: नहीं नहीं, ये असल में टेक्सा फिया का फेमस साहब जो है ना जी, ये एक आपको पता, ये एक सम शूटिंग है, फाइनिंग है, इसके हर साल मस्ट इलेक्शन होने होते हैं और मई में होने होते हैं। ये आपको पता कि ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं डेनमार्क की, उनका एक ऐसे ही दस्तूर होता है, तो वो हर हालत, और हमारा जो है ये, यानी कि पिछले ये मैं 6वीं दफा मैं इसमें शिरकत कर रहा हूँ, और हर साल मई में होनी होती हैं। अगर कोरोना था और चीजें थी, अगर खुदा न खास्ता कोई डेट में तब्दीली करनी पड़े, तो वैसे जो हमारे मंशूर के मुताबिक, हमारे निजाम के मुताबिक मई का माह होता, और इस दफा मई 31 को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हर एक जो मेंबर है कंपनी में, बॉन्डमैन है, उसे पूरा पूरा हक है वोट देने का, और जो कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हें पूरा, यानी कि उनका हक है कैंडिडेट अपने आप को। पहले भी आपने इस पर प्रोग्राम किए, मैं भी फोरमैन था इसका 3 साल, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी प्रोसेस है, और अपनी अपनी फिक्र, अपने अपनी जरूरत, अपना अपना तरीका कार है, उसके साथ साथ चलना है।
1: ये चलना जी। मियां साहब आखिर में आप अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे?
2: जी मैं अपने तमाम बहन भाइयों को हमेशा की तरह मेरी यही इल्तिजा है कि आपस में इत्तेफाक से रहें, आपस में प्यार से रहें, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। यहाँ इस माशरे के अंदर उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको इस माशरे के अंदर एक अच्छा शहरी बनाने के लिए और एक बेहतर जिंदगी बसर करने के लिए और बेहतर जिम्मेदारी के लिए, यानी कि जॉब के सिलसिले में उनकी एजुकेशन, सारी चीजों इनका ख्याल रखें। और आपके पास जो एक सबसे बड़ा अल्लाह ताला की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम मुसलमान हैं, फिर फख्र है हमें कि हम पाकिस्तानी हैं। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला राय साहब आपको भी हम सबको इत्तेफाक दे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें इस तरह इंशाल्लाह चलती रहेंगी और इन्हें चलना है। बड़ी मेहरबानी राय साहब।
1: मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: पाकिस्तान
1: जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। समय नाजरीन ये थे मियां मुनीर अहमद साहब, जो जिन्हें आप अक्सर अदर आपकी आवाज पर सुनते रहते हैं, साला साल से आप सुन रहे हैं इनको। इनका ये मैसेज था रैली के हवाले से, मार के हक के हवाले से, जो मैसी में प्रोग्राम हुआ उसके हवाले से। समय नाजरीन हमारा मुतफिक होना जरूरी नहीं, अगर आप कोई बात करना चाहें तो हमारा टाइम आपके लिए हाजिर है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम है आज का, और आपको पता है कि 10 मई के हवाले से मार्का हक का जो प्रोग्राम आज पाकिस्तान एम्बेसी में हो रहा है, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वेलकम करेगी मेहमानों को, और ये दावत आम है। तो हमने कहा पूछें जो लीडरान लोग होते हैं उनकी क्या सोच है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथी चौधरी शौकत साहब जो कि मशहूर बिजनेसमैन है डेनमार्क में, समाजी कारकुन भी हैं और सरपरस्त आला भी जो हैं आफ लीग के यहाँ डेनमार्क में, और पुराने मुस्लिम लीग के हैं और 26-28 साल सदर भी रहे। तो हमने कहा ये बेहतर इस बारे में बात कर सकते हैं मार्का हक के मुतल्लिक। तो चौधरी साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को और मेरे सुनने वाले सामाइन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम।
1: चौधरी साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांधी, आपका बिजनेस कम्युनिटी से भी तल्लक है और आपका समाजी कारकुन भी हैं आप और सरपरस्त आला भी हैं आप जो है मुस्लिम लीग काफ के यहाँ डेनमार्क में, तो आप क्या मार्के हक के हवाले से क्या पैगाम देंगे?
2: जी राज साहब, इंशाल्लाह जो है ना, हम ये जो है ना मार्का हक है जो आज दिन जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, पाकिस्तान की फौज ने एक ऐसा कारनामा अरसे दराज के बाद जो है ना अदा जो है ना मार्का हक जिसका नाम है वो किया और जो पूरे पाकिस्तान का सर जो है बुलंद कर दिया, अवाम का भी, फौज का भी, जितने भी सारे हम जो है ना पाकिस्तानी हैं इनके लिए एक बड़े एजाज का दिन है। आज हमें खुशी मनानी चाहिए और इंशाल्लाह हम जो है ना डेनमार्क में एक रैली की शक्ल में पाकिस्तान एम्बेसी में जाएंगे और ये दिन मना के, क्योंकि हम ये दिन जो है ना कभी भी भूलेंगे नहीं जिंदगी में इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारी फौज ने किरदार अदा किया, हमारी क्यादत ने जो है ना जो ना कारनामा अदा किया, ये सभी सभी के नाम जाता है ये जो है ना। और दूसरा ये हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम इस दिन को कामयाब करें और खुशी मनाएं इस तरीके से कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी एक कौम है और पाकिस्तानी जो है ना एक दूसरे को पाकिस्तानी के पाकिस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनकी कामयाबी के लिए हर वक्त दुआगो होते हैं, दुआएं मांगते हैं। हमारी माएं बहनें घर बैठे पाकिस्तान की फौज के लिए दुआगो हैं और दुआएं मांगती हैं कि जो हमारे बच्चे हमारे भाई जो महज पे खड़े होके पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए जो हमेशा से कुर्बानी देते रहे हैं वो, लेकिन अब तो ये जो है ना अब जो निकल गया ये पाकिस्तान वाला लफज, अब तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आदत करेगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है ना अपनी जो है ना अपने मुल्क की जो हफाजत की जो है ना जिम्मेदारी देने को तैयार है। काफी लोग काफी मुल्क जो है ना एग्रीमेंट भी कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी इजाज की बात है, हमारी फौज के लिए इजाज की बात है कि जो लोग हम पे इतमाद कर रहे हैं कि जो अगर कोई ताफत दे सकता है तो पाकिस्तान दे सकता है हमें और पाकिस्तानी फौज दे सकती है। तो हम इंशाल्लाह आज रैली की शक्ल में ब्यासा सवाए पे गौन फैसल है फेम वाए उधर से कारों में ये इंशाल्लाह जोश जज्बे से हम आएंगे,
1: आप आए रैली में आए क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वेलकम करें एम्बेसी में।
2: जी बिल्कुल, और एम्बेसी ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, उन्होंने भी लोगों को दावत आम दी है और पाकिस्तानी लोगों को बाकी लोगों को भी बुलाया है कि आप आए एम्बेसी में आके हमारे साथ ये दिन मनाएं। तो इंशाल्लाह राजा साहब हम बिल्कुल भरपूर तरीके से ये दिन को मनाएंगे, हमारे बच्चे भी, हमारी बहनें भी, हम सब भाई भी मिल के पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं और इंशाल्लाह हमेशा दुआ करते रहेंगे और अपना पूरा किरदार अदा करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, हम यही एक ही नारा लगाएंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चलो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे चौधरी शौकत साहब जो कि यहाँ डेनमार्क के मशहूर बिजनेसमैन है और सरपरस्त आला भी है, उनकी बात आपने सुनी, उन्होंने पाक फौज के हवाले से मार्का हक के हवाले से अपना मैसेज जो है वो दिया, लाइव मैसेज दिया। तो कोई भी मैसेज देना चाहे तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है। समझ चौके आज स्पेशल प्रोग्राम है तो हर आदमी को अपनी हक है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुतफिक होना जरूरी नहीं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नाप ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: असल में ना ठीक एग्री नहीं हो पा रहे अभी क्योंकि जैसा आप जानते हैं तो जो थोड़ी सी ब्लू पार्टीज होती हैं उन्होंने अवेयर्स लेवल को जो मतलब बिजनेसेस होते हैं उनका भी सोचना होता है, उनको थोड़ी छूट देनी होती है। और वो इससे फाइनेंस लिस्ट जैसी पार्टीज उनको तो मतलब ना बिजनेसेस को छूट देना है क्या, तो सोच भी नहीं सकते उनका तो दिल करता है ना कि हर चीज बस बढ़ाते जाए और हर चीज में पैसे डालते जाए, मगर आने कहाँ से है ये नहीं सोचना ना किसी ने,
1: लेकिन
0: तो सुनने
1: देखा
0: में तो
1: जाए
0: बड़ा अच्छा
1: तो
0: लगता है।
1: निशान, देखा जाए तो यहाँ सारे काम जो लगे आते हैं सरमायादारों वाले ही हैं। आप देख लें कि शहर में हर चीज़, गाड़ियों को देख लें, दूसरी चीज़ों को देख लें, तो ये तो लगता है कि सारा निज़ाम ही सरमायादाराना है।
0: एक मिनट, सरमाया गाना जरा राजा साहब समझाएं जरा मतलब इकोनॉमी स्टैक फॉल्क।
1: आप देखें ना, एक तो उम्र, काम करने वालों की उम्र की याद की तरफ भी जो आप बातें निकली शुरू हुई हैं कि काम करते हैं पेंशन वालों की उम्र को कम किए या पहले बढ़ाते रहे हैं, इसी तरह गाड़ियों की अगर बात करते हैं तो ये गाड़ी आम आदमी तो नहीं खरीदते, ये तो किसी के पास पैसे होते हैं तो खरीदते हैं। गाड़ी की स्पीड है 300 किलोमीटर फी तक जा सकता है, मीटर उनका 200 तक जा सकता है, तो आपकी शहर की
0: हाँ
1: स्पीड है 20-25 स्पीड है टोटल मैक्सिमम, तो
0: जी,
1: ये
0: वो तो फिर
1: मजदूरों
0: ऐसे
1: का
0: ही है ना।
1: निज़ाम तो नहीं है ना।
0: नहीं, हाँ अच्छा ये बात समझ आ गई बिल्कुल। और मजदूरों का निजाम आप बिल्कुल सही समझे, आजकल वैसे दो मजदूरों वाली पार्टियां भी देख लेना, ये
1: मैंने
0: तीनों
1: इसलिए
0: मजदूरों वाली
1: कहा ना कि
0: पार्टियां
1: मेहते
0: देख
1: तो मजदूरों को जो है ना, ये लोगों, मजदूरों का ख्याल है, ये हमारी हमदर्द है।
0: लेना। हाँ जी बिल्कुल, और मतलब है, और वो भी अब खत्म होता जा रहा है। आप देखेंगे फर्स्ट में ये भी होके गया, आप आर एन एस इंटरनेशनल खामते होके गया, वही बात कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो छिल स्लूथनिंग है ये भी कम होती जा रही है। फर्स्ट मई को भी आप आयरनेस खामते हैं,
1: लेकिन
0: क्योंकि वो
1: बड़े
0: भी
1: लोग
0: इनको
1: थे इस
0: आगे नहीं
1: दफा,
0: सुन।
1: काफी अरसे के बाद इतने लोग देखे हैं।
0: हाँ जी, वो तो असल मौसम अच्छा हो तो निकल आते हैं, मगर ये कि इनको सुनने के लिए कोई भी नहीं आता, क्योंकि इनको पता चल गया कि जितने ये टॉप पे बैठे हुए हैं आजकल, इनमें से कोई खुद वर्कर तो कभी रहा नहीं जो आजकल बैठे हैं। एसएफ में भी देख लें आप, या सुशील मुखद्दस में भी देख लेना, ये सारे बस पॉलिटिक्स पढ़ के आगे पॉलिटिशियन बन गए हैं। तो अब वो जो वर्कर वर्कर बंदा है वो इनके साथ मतलब रिलेट भी नहीं कर पाता जब ये बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो यही तो वोटर्स को यही हो गया कि अब आप आड़ा उस तरह, ये आप आड़ा पछिया रहे ही नहीं। तो और
1: ये बात
0: माशाल्लाह इनको
1: आपकी
0: सबको
1: दुरुस्त है।
0: देखे
1: देखे
0: जो
1: ना, अगर हमने जब लोगों से पूछा आगे पीछे बात की तो दो ही नाम आ रहे थे, मेते और लास्ट लुके जो है ना, और तीसरा बंदा ही
0: जी,
1: पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ।
0: नहीं इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। असल में वही बड़े बात, पिछले दिन मुझे कोई कह रहा था कि मेटे नहीं दोबारा बनना, मैंने कहा असल में आप 10 पे 20 साल पीछे जाएं देखें कितने कितनी बड़ी बड़ी प्रोफाइल होती थी, मतलब पॉलिटिशियंस की, मतलब इतना इतना एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होता था। अब असल में आते हैं और काम कोई किया नहीं होता, और बस वो एक्सपीरियंस काफी लोगों का, अब जो बैठे हुए हैं है नहीं बाहर सही दुनिया का। पहले पहले ऐसे में सही दुनिया से लोग आए होते थे, पता भी चलता था कि जब बोलता है कोई पॉलिटिशियन तो अच्छा बोलता है। तो अभी भी पार्टी लीडर भी आप देख ले, कोई किसी में उस दम ही नहीं, और जब मुंह खोलना है गलत बात करने के लिए मुंह खोलना है तब भी मीडिया ने भी सुनना है। अब मैं उसकी देख रहा था, अब आप वैसे ही फर्ज कर लेना, ये फरेले वैमन जब अपनी पॉली की फॉर्मेन थी हमारे मतलब गैर मुल्की के खिलाफ कितना बुरा बुरा बोलती रही है, अब मीडिया में रही है, अब लिपाल लियांगसे में गई है, इसका इसको लर्निंग ऑफ बनाया, अब ये भी जाया कहती है नहीं उस वक्त मैं जो कहती थी काफी चीजें थी गलत हैं, इसने वो एक दफा फैगा का वर्ड यूज किया था तब बड़ा कहती थी जी मेरा जी राइट है मैं कर सकती हूँ, कहती नहीं अब मैं सुनती हूँ तो मैंने गलत किया है ये वो। तो मीडिया में रहने के लिए इनको बस यही एक चीज मिली हुई है कि उलेनिंग के खिलाफ बोलते हैं तो इन्हें मीडिया टाइम भी मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, उसके अलावा इनको बात कोई करने ही नहीं आती, और इनको भी पता है कि गलत ही बात करनी है और हमें मीडिया टाइम चाहिए, बट सही पॉलिटिक्स की बात करता ही कोई नहीं आजकल, सारे जो बैठे हुए हैं
1: तो क्या जीशान कोई
0: एलेक्स वेनेक
1: इमिग्रेशन
0: साहब।
1: की बातें कर रहे हैं, कोई पॉलिसीज बना रहे हैं इमिग्रेशन की?
0: इमिग्रेशन तो जी वो तो मेरे ख्याल से कोई भी उस तरह से कहते हैं ना फाइलिंग पॉप पे जो ये पार्टियां बड़ी बोलने वाली थी, ये भी इमिग्रेशन तक तो पहुंचे नहीं क्योंकि इकोनॉमी क्लीम है इन लोगों का एक नहीं होता सही तरह। इमिग्रेशन पे इतना है कि उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो जरा हल्का करें, ये जो स्टेट पॉसकेप के लिहाज से स्पेशली ये रेड पार्टीज ये बोल रही थी हम भी बोल रहे हैं इसके बारे में देखना चाहिए, मतलब इसके वो तो हम करेंगे इधर से, वो मेरी बाकी उस भाई जो
1: लेकिन
0: एक्टिव
1: इमिग्रेशन
0: है हमारे भी
1: पॉलिसी पे जहाँ जहाँ सख्ती हैं तो सारी जमातें जो है मुत्तफिक के अंदर से
0: बिल्कुल अंदर से मुत्तफिक है, इसलिए जाके अब थोड़ा सा ये बनता है ना, तो हमें पीछे से अब धक्का मारना पड़ेगा कि क्योंकि सबने ये थोड़ी थोड़ी बातें की हैं कि ईज करना चाहते हैं ना, बातों का फिर बातें की हैं फिर पूरी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि
1: तो आप देखें ना,
0: एक दूसरे पे
1: रेडिकल
0: डाल
1: भी
0: देते हैं
1: काफी
0: ना बड़ी
1: वोट्स
0: जल्दी।
1: लेकर गए हैं उनके कैंडिडेट से, क्या वो अपने लीडरान को पुश करते हैं? आप तो चले एक अच्छी जगह बैठे हुए हैं।
0: वो भी पुश करते होंगे, बिल्कुल पुश करते होंगे, मतलब मेरी भी बात होती है, अभी हमारे जितने गरीखेल में भी भाई बैठे हुए हैं और बैठी हुई है, मतलब पुश तो सारे करते हैं। यह है कि फाइनलिंग मेरे ख्याल से इस फाइनलिंग तक अभी नहीं पहुंचेंगी, मगर आगे जाके इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन चीजों को हम उठाएंगे, अगर तो ये रेड और रेड के साथ और मुर्गार ने की बन जाए तो इन चीजों को उठाएंगे बिल्कुल।
1: तो ये यूक्रेन के में जो हमारे अखराजात होते हैं जिसे कहते हैं जी हमने सोलिडरिटी के साथ ये सारा करना है, तो ये अखराजात कम होंगे या बढ़ते जाएंगे आने वाले दिनों में?
0: ये भी इसकी ऐसे तो अब अगर आप देखें डेनिश जो सोसाइटी है वो भी मतलब इसके काफी खिलाफ होती जा रही है ना, कि मिलियार्ड हमने किधर किधर दे दिए, जिस तरह आप कह रहे थे अखराजात कम करने और करने, मतलब हमारी इकोनॉमी डेनमार्क की वैसे तो काफी अच्छी है, वो डिपेंड करना है पैसे यूज किधर करने हैं हमने, तो उधर बहुत ज्यादा लगाया यूक्रेन में, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वो वाली बातें भी निकली कि उधर जो पैसे भेजे हैं उधर भी करप्शन थोड़ी नहीं है उस मुल्क में, मतलब वो भी ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठना शुरू हो गए थे एक टाइम पे, तो बड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए कि चले मदद करनी चाहिए जहां मदद करनी है, मगर पहले अपनी मदद आप तो करें ना सही, इधर हमारे जो उनसे सिस्टम वगैरह मुश्किल होता जा रहा है। आप यानी मैं स्कूलों में नहीं कहता, स्कूल तो फिर भी बेहतर है, मतलब फिडकोआ का इस वक्त या सोसो का अमोद हो गया, सुप्लाइज का अमोद हो गया, मतलब बहुत इस वक्त जरूरत है इन चीजों में इन्वेस्ट करने की हमें आने वाले वक्त के लिए, वो जो इनको नजर नहीं आ रहा, कोशिश करते हैं बातें करते हैं मगर उन ये वेलफेयर होता है ना कभी कोई सही तरह कर नहीं रहे, जिसमें मैं बोलूंगा कि हम टीचर्स तो माशाल्लाह फिर भी काफी अच्छे हैं, मगर फिड़क वो कम से कम होते जा रहे हैं हमारे इधर सोसाइटी में जो उनसे, और उसका बहुत फर्क पड़ता है बच्चों को, तो वो भी उम्मीद है कि उधर भी अब थोड़ा सा
1: जो शोर डालती है, ऐसे भी शोर डालती है ना, मतलब नीचे जो अपने एक उनके भी सारे तबका है जो वोट उनको देता है अक्सरियत में देता है, इसी तरह सरमायेदारों को देता है, इसी तरह दूसरे लोगों को देता है, तो ये वोट देने वाले भी तंग पड़ रहे हैं। एज ए उस्ताद आप क्या कहेंगे कि किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि बच्चे नीचे से जाएं पढ़े लिखे, जरा यहाँ तालीम तो पक्की है, आपने 8-9 क्लासें कर 10वीं तक पढ़ना है या किसी उम्र की हद तक आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये बच्चों को इस तरफ गाइड दें। आप लोग कहते हैं नहीं यार ये कानून ज्यादा आसान है, ये तो थोड़ा सा पढ़ के आप अंदर दाखिल हो सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी सी कोशिश करके वोट लेकर आप जा सकते हैं, तो हमारे बच्चों को करना क्या चाहिए? हमारा मुस्तकबिल तो ये है।
0: जी जी, और उनको असल में जी जो सबसे बड़ा मसला हो गया ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और हम कहते तो हैं स्कूलों में आता है जी एनसी मॉपनिंग कंपेनियां चलेंगे जी, कि मॉपनिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अच्छे से बोलना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए, मगर मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वही बच्चे हैं जब इनके हाथ में मोबाइल आता है कि हमारे पॉलिटिशियन कैसे बात कर रहे होते हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं। अभी मैंने आपको फनेल वैमन की एग्जाम्पल दी है कि उसने जब वो नेपाल की फॉर्म में थी उसने ऐसी ऐसी बातें की जो अब खुद वही कहती है यार मैंने गलत किया है, मगर बस फेम लेने के लिए ऐसी बातें कर देती हैं, ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसे एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं मीडिया टाइम पाने के लिए, बच्चे बैठ के देख रहे हैं और बच्चे इफेक्ट होते हैं इन चीजों से। और ये मैंने पहले भी आपके भी प्रोग्राम बोला, सबको मैं यही बोलता हूँ कि हमारे बच्चे बैठ के ये देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो इनको देखते रहते हैं सुनते रहते हैं, क्योंकि अब ये सारी पॉलिटिक्स टिकटॉक पे भी आ गई है, हमारे लोगों को भी चाहिए, हमारी तंजीमों को भी चाहिए कि हम लोग भी किसी तरह अपने मैसेजेस अपने बच्चों तक पहुंचाएं कि फाइनेंस नहीं जिस तरह कहते हैं बहुत जरूरी होता जा रहा है, वरना तो बच्चे आप देखें आजकल पॉलिटिक्स वो टीवी ऑन करेंगे बोलेंगे यार ये देखो बड़े कैसे करते हैं और आप लोग हमें कहते हो कि हम लोग ऐसे ना करें, ठीक है ना जी, तो जिम्मेदारी बड़ों पे बहुत ज्यादा है, वो जिस तरह मतलब वो कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग ही होता है, वो देख देख के आपको सीखते हैं, आपके बताने से आप जो बताएंगे वो नहीं सीखेंगे, आप जो करेंगे वो सीखेंगे।
1: ईशान प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखें कानून जहाँ बनते हैं जहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं कम्यून्स हैं और पार्लियामेंट है, तो हमारे लोग जो हैं वो कितने लोग जा रहे हैं, कम्यून्स की तरफ जा रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, शोर पड़ता है, इलेक्शन नज़दीक आते हैं, दो तीन महीने जब रहते हैं इलेक्शन होने में शोर पड़ना शुरू हो जाता है। ये मेरी याद में पहली दफ़ा हो रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ने अभी से कहना शुरू कर दिया, जिसमें आप भी उसमें शामिल हैं, कि हम इन अगला इलेक्शन जो है इंशाल्लाह लड़ेंगे। अब लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कि वो आपको चार साल वाच करते रहे, इलेक्शन तो कल परसों महीने दो बाद भी हो सकते हैं, दो साल बाद भी हो सकते हैं, ये तो फिक्स कम्यून के तो फिक्स होते हैं। तो अब बाकी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डेंटिस्ट बनना चाहता है, वो कहता है पैसे कहाँ पड़े हुए हैं।
0: हाँ जी, वो तो फिर ऐसे ही है, वो तो हमें भी याद है, मुझे अपना भी याद है, वो तो बच्चे जब हमें भी हम जब बजाते स्कूल किताब आती थी बैठें या प्लीज, वो भी होता है। और अभी भी मैं बच्चों को देखता हूँ, जैसे आपको बताया मैं स्कूल वायलर भी हूँ, तो वो सबसे पहले ये सर्च करते हैं बमाल छेना कुछ भी कहते हैं बमाल छेना, तो वो एक बड़ी नेचुरल सी चीज है, ये चीज तो आगे बढ़ते बढ़ते आती है। मैंने भी अपनी जिंदगी ऐसे की थी, मैंने भी पहले यही सोचा था जी के मतलब मास्टर्स करेंगे बिजनेस लैंग्वेज कल्चर में, बाहर के मुल्क निकल जाएंगे। तो फिर जब देखा जी कि दुनिया बाहर कैसी है और इधर भी मतलब अच्छा सुकून है, तो बैंक में भी एक साल काम करने के बाद मुझे भी तब पता चला ना कि नहीं यार काम कुछ और करना चाहिए। तो ये सीख आते आते आती है, बस ये मैं बच्चों को भी कहता हूँ, शौक है अगर कोई तो शौक को अपने कोशिश करो काम बना लो, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। मगर जाहिर है कुछ लोगों का शौक ही है पैसे कमाना, तो इसी जरिए भी वो बन जाते हैं कि मतलब यार पैसे तो अच्छे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, शौक हम अपना बना लेंगे, तो ऐसे भी बन जाता है। मतलब ये है कि बस शौक रखे ही रखे, मगर काफी दफा ये हो जाता है कि कुछ बंदों को मैं भी जानता हूँ पढ़ लिख गए हैं, अच्छे जॉब्स वगैरह, मगर मजा नहीं आता। मगर ये सोचना चाहिए कि सारी जिंदगी वो काम करना है, काम वो करो जिसमें मजा है। इस तरह माशाल्लाह देखे ना, आप भी जर्नलिज्म कितने अरसे से ये सहाफियत कर रहे हैं, अब कल मेरे ख्याल से कल तीन मई आ गया ना जर्नलिस्ट डे,
1: आज तीन मई
0: आप लोगों का भी, आज अच्छा आज तीन मई है, मुबारक हो जी फिर आपको, आज तो फिर जर्नलिस्ट तय हो गया। इस तरह डे आते हैं हम सब के जो काम कर रहे हैं बड़े शौक से, हमें तो इन दिनों का बड़ा इंतजार होता है, 5 अक्टूबर हम टीचरों का होता है, तो काम असल में ऐसे ही करें जिस तरह आप देखें माशाल्लाह इतना शौक से कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी के साथ भी कर रहे हैं, उसका मजा ही अपना होता है कि काम का काम हो जाए साथ खिदमत खल्क भी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
1: थैंक यू जीजान, मैं आखिरी सवाल करता हूँ, चूंकि आप जिम्मेदार जगह पे बैठे होते हैं, मौका मिलता है आपको बात करने का, बात बढ़ाने का, तो हम गाड़ियां तो खरीदते हैं बड़ी बड़ी छोटी गाड़ी, गैर मुल्की तो कोई अब छोटी गाड़ी खरीदता नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देख लें, टैक्सी में गाड़ियां देख लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां पड़ गई हैं, महंगी गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक सारी तकरीबन इलेक्ट्रिक हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही शहर में, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी तो जगह है लेकिन आम पार्किंग की जगह ख़त्म हो रही है, तो जिनके विले हैं तो वो अपने विलों में या जिनके अपने घरों में पार्किंग वो पार्किंग कर लेते हैं, तो या तो अब ऐसा कानून बने कि जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं उनका तो कसूर नहीं है, लेकिन जो नई बिल्डिंगें बनती हैं उनके नीचे पार्किंग बनती है लेकिन वो पार्किंग भी प्राइवेट हो जाती है।
0: बिल्कुल असल में, और वो बस क्लाइमेट के नाम पे ऐसे ही कर देते हैं ना। अब हमारे आप देखें, आप शहर की बात तो कोपेनहेगन तो अल्लाह माफीज है, मैं इस हफ्ते एक दफा गया था फिर कानों का हाथ लगा के निकला, मगर हमारे बेलरूप देख ले आप, इतनी नई मतलब कंस्ट्रक्शन काफी हुई है और पार्किंग का हमें भी इशू बन गया, मतलब इवन तो शहर से बाहर है क्योंकि बनाते ही आजकल ऐसे है। और फिर आर्ग्यूमेंट आगे से ये है ना, वी पिकस द शोन नैत के जी हमने स्टेशन के पास बनाया, तो उन्होंने गिनती ऐसे की होती है कि एक घर की पूरी एक गाड़ी भी नहीं लगाई होती, 0.8% गाड़ियां होंगी, एक एक गाड़ी भी अगर लगाएं मतलब, और आजकल आपको पता है कि बेशक स्टेशन के पास रहते हैं 1.5-2 गाड़ी तो हर घर के पास है, मगर वो जिस तरह ना बस क्लाइमेट के नाम पे वो हमने इधर उधर ना पूरी दुनिया का वो उठाया हुआ है बोझ, वो कहते हैं हमारी इसमें कुछ पार्टीज है, अच्छी बात है अच्छी फिक्र है, मगर जब आप देखते हैं कि दुनिया भर में होकर आए कि तो फिर वो वाकई में कहते हैं कि डेनमार्क में हमने से पी पी के ना क्लाइमेट बचा लेना, नीयत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं, मगर बहुत मुश्किल करते जा रहे हैं अपनों के लिए ही हमेशा, तो हमें भी वो इसीलिए कहते हैं ना कि इडियलिस्ट एक चीज होती है, आइडियलिस्ट होना चाहिए मगर उसके साथ रियलिस्ट भी होना चाहिए कि काम हो कौन से सकते हैं, और वही मेरी मैं अब काफी यंगस्टर से जाके अभी भी मिलता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं अगले इलेक्शन की तैयारी अभी से हो रही है, और इस दफा जैसे मैंने आपको बताया भी है और बाकी से बोला कि मुझे फील हुआ कि हमारे काफी यंगस्टर हैं जिन्होंने इन हाउस लिस्ट वगैरह को जाके वोट दिया और इस साइड पे, तो उनसे अब जाके यही गुफ्तगू होती है ज्यादातर कि ठीक है अच्छा है कि वो सोच अच्छी है कि हम भी चाहते हैं कार्ड छेले हो जाए, सब फ्री हो जाए, और ये मतलब ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दो, मगर पैसा कहाँ से आएगा? तो इन चीजों को देखना समझना बड़ा जरूरी है, अपने यंगस्टर्स को समझाना बड़ा जरूरी है, अपने साथ लगाना बड़ा जरूरी है। तो वो मेरी बड़ी कोशिश है कि अभी से ही बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। मैं तो अब इसीलिए शुक्र किया कि गर्मियों के जुम्मे आए हैं, अब वो भी पढ़ सकता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट मस्जिद में जाकर दोबारा पढ़ना शुरू किए हैं, लोग मिलते हैं, बात करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, और इसको मैं इंशाल्लाह कंटिन्यूस करूंगा। अभी एग्जाम्स बच्चों के खत्म होते हैं तो एक दफा खुद भी एक्टिव होऊंगा, सोशल मीडिया पे भी दोबारा देख रहे हैं कि किस तरह अपने यूथ को इन्फॉर्म कर सके, तो मेरी पूरी
1: आप
0: कोशिश
1: इस
0: रहेगी
1: अगली दवा को यूथ वोट जिसको भी देगी वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे।
0: इंशाल्लाह जी। बस उम्मीद देखिए जी, वही हमारा मुस्तकबिल है, वो जो चाहते हैं हमें उस तरह काम करना चाहिए, और पूरी कोशिश है जो उनकी फिक्र है, जो यंगस्टर्स की, हमारी भी वही फिक्र रही है पूरी जिंदगी, और अभी भी वही फिक्र है, तो इसलिए उनके शाना बिशाना होकर लड़ेंगे। मैं वही बच्चों को भी कहता हूँ कि मैं अब यंग नहीं हूँ, मेरी 40 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, मगर आपकी ये जो मुश्किलात प्रॉब्लम है आप जो बता रहे हैं, हम भी इन्हीं में बड़े हुए हैं, और हमें अब इन काफी चीजों की समझ भी है कि इनको डील कैसे करना है। माशाल्लाह से कॉन्टेक्ट भी है, और हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कामयाब होना चाहिए। जाहिर पैसे कमाएं, अपने लिए भी कमाएं, मगर हम जो अपने बंदों के लिए भी साथ कर सकते हैं, उससे ज्यादा मजा और किसी चीज का नहीं है। मस्जिद में आप जाते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, उसका सवाब आपको है, मगर जो काम आप अपनों के लिए करते हैं उसका और बहुत अजर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मस्जिद का काम सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं है, हमें सोसाइटी में रहना किस तरह है और हम कैसे डील कर सकते हैं जो इश्यूज आ रहे हैं, इनको सिखाना बड़ा जरूरी है हमारी तंजीमों के लिए। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपको भी बताया, तो आपके सुनने वालों को भी बताया कि मेरे लाइक कोई खिदमत, कोई अगर आप चाहते हैं यंगस्टर्स को इकट्ठा कर लें, और ये मत सोचें कि मैं पॉलिटिशियन एज उस्ताद बुलाएं, तो इंशाल्लाह आके उनके साथ मैं कनेक्ट करूंगा, और उनकी जो जो भी होंगी वो सुनेंगे, आपस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन्हें गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे चलना है, क्योंकि आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि सोशल मीडिया पे वो जितना हेट देखते हैं वो इतना तो हम भी अपने टाइम पे नहीं देखते थे, तो हमारे बच्चों को हमारी बहुत जरूरत है।
1: तो क्या कोई कानून तो हम जमहूरियत का नाम लेकर बोलने लिखने की आज़ादी लेकर बहुत कुछ कर जाते हैं, तो जिस तरह कोई सियासी जमातें तो तब्दीली लाती हैं और जो सियासी जमातें नफरत फैलाती हैं, तो ये कैसा कानून है?
0: जी, और उनके खिलाफ मतलब खड़ा होना पड़ेगा, और यही तो बार बार बताना पड़ेगा कि नफरत फैलाने वाले जो उनसे हैं इनसे ही बचना चाहिए, क्योंकि ये बस अपनी पावर के लिए फैला रहे हैं, और इनमें बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उठा उठा के देखें, अब ये फनी लवैम उनका दोबारा उठा लेंगे, मतलब कहते हैं बाद में कुछ और कहते हैं, इन्हें भी पता है नफरत फैलाना बड़ा गलत काम है, मगर बस उसी पे ही हाइप मिलता है। नफरत पे बात हो रही, मेरी बेटी आई गाल कहती है बाबा अभी इसके अलावा प्रोजेक्ट एंड बयान स्क्री, मैं कहा पुत्र आप ना अपना एम रख के, अपने जो इमने ना रख के देखना कि हिटलर पावर में कैसे आया था, वो उसके साथ आजकल मेरी बड़ी मजे की डिस्कशन होती है कि नहीं बाबा वो तो मतलब दीवाने थे लोग उसके, और उसकी स्पीचेस और वो जो बातें, मैं कहा उसकी स्टेट्स मतलब उसके जो कोर्ट्स है ना वो लेके आप देखना कि ऐसे हेट करते करते, और मतलब कि जी मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर करूंगा, मैंने कहा ये एक मतलब हेट स्पीच और जोन सी होती है, ये इस तरह के लीडरान बहुत आ गए हैं दुनिया में, और इनसे हमें बचना चाहिए, और इनका मतलब बढ़ चढ़ के हमें जो उनसे नहीं मुकाबला करना है, तो
1: क्योंकि
0: इसलिए
1: बच्चों को इस उम्र में हीरो अच्छे लगते हैं, विलन अच्छे
0: जी
1: लगते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, वो उनकी समझ आसानी में आती है ना, वो आप देखे ना हमारी वो हमदी ये कि आप अपनी बॉलीवुड लॉलीवुड फिल्में देख के बड़े हुए हैं, वही बंदा कहता था विलन पूरी फिल्म में यार अच्छी भली जिंदगी गुजार गया, हीरो मतलब पूरा एंड में बस वो सारी जिंदगी मुश्किलों में काट काट के, हीरो जो उनसा होता है ना एंड में जीतना होता है, 2 घंटे की फिल्म में विलन ने तो मौज ही किए तो वो दिखाना पड़ता है कि जाहिर है कि जिंदगी अच्छे अखलाक, जी हमारा दीन भी अखलाक सिखाता है, अच्छे अखलाक के साथ अपना दीन और दुनिया दोनों इसी से सबर नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो अच्छे ना ठीक है 2 घंटे आप अच्छे रह लेंगे, एंड अच्छा नहीं होगा ना फिर, तो अखलाक में इंशाल्लाह। तो
1: बेहतर है
0: पॉलिटिक्स
1: जीशान, आपका
0: आना
1: बड़ा
0: बड़ा
1: शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया, और मुझे पता है
0: शुक्रिया
1: आपने
0: आपका
1: जाना
0: मेरे
1: होता है,
0: साथ
1: मीटिंग्स होती हैं, ये छुट्टी का दिन होता है, तो काम करने वाले के लिए तो एक एक मिनट जो है उसका कीमती होता है। तो
0: बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं आजकल वही आपको बोला ना, अभी बस मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब ये आज संडे आधा निकल जाएगा पढ़ाते पढ़ाते का, जरा बस देखना है कि बच्चों की तैयारी कैसी है सुबह के लिए, जो मेरे अपने ट्यूशन वाले बच्चे हैं, तो आज इसमें निकल जाएगा। वही बोला पॉलिटिक्स, इंशाल्लाह एग्जाम्स हो गए तो इसके बाद मैं एक दफा फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा दोबारा, ऑनलाइन भी और सारा। तो आपको जी दोबारा जर्नलिस्ट डे मुबारक हो, राजा साहब आज का प्रोग्राम तो फिर आपके नाम।
1: थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी।
1: सामाई नाजरीन, ये थे जीशान जो के बात कर रहे थे। सामाई ना गपशप की शक्ल में हम बात करते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए, कहने वाला खुलकर बात आप कर लें। तो जब आप बहुत सारी पेचीदा किस्म की बातें सवाल करना शुरू करते हैं तो फिर जवाब सोच समझ के देना पड़ता है। तो इसलिए जब आप गपशप की शक्ल में बात करते हैं तो सारी बातें जो है वो आसानी से वो करते हैं, फिर समझाने में भी उनको जो है कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, सवाल करने में भी फिर दिक्कत महसूस नहीं होती। तो समय नाजरीन हमारे साथ साथ रहिए। अगर किसी ने कोई बात करनी है, अपना नुक्ता नजर पेश करना है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समाइन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी खबरें होती हैं जो आपके साथ शेयर करनी होती है। जो भी नई खबर आती है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने समाइन नाज़रीन तक इस खबर को पहुंचाया जाए और ख़बर ली जाए। जो खबर देते हैं ज़ाहिर है उनके पास खबर होती है, बहुत सारा टाइम उनका भी लगता है, तो हर आदमी बंदा बड़ा मसरूफ़ होता है। तो हमारे तजिया नगार अदनान अमीन अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है अदनान, मौसम तो आज बहुत अच्छा है, लेकिन आज खबरों के लिहाज से क्या आप लेकर आए हैं? आप
3: राजा साहब, खबरें तो बहुत ज्यादा हैं और बहुत, तो जैसे पता है मौसम भी आज अच्छा मौसम है, उम्र की तरफ जा रहा है। और मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक खबर है जिसका इतनी हाईलाइट नहीं है, मगर उसका क्या कहते हैं, एक आउटपैक बहुत काफी किस्म का आ सकता है। हम यहाँ एमस्टर्डम कमून में रहते हैं, वो 2019 का केस है। वो ये केस था कि दो पक्षिकें थी फीमेल्स जॉब के लिए स्कूल पे, और उनने क्या कहते हैं हाथ देने से कहा था कि हमने हाथ नहीं देना, हमारे कल चली मुसलमान थे डेफिनेटली, और उनको पक्षिकेंता थे और उनको उस वजह से जॉब से बाहर निकाल दिया गया था। वो पे लीज टेलिंग ने उनके अंदर केस चला था और वहां पे उनको क्या कहते हैं मिल गई थी कि वो सही थी और स्कूल वाले गलत थे। फनी बात है, उस वक्त मैं खुद स्कूल का प्रिंसिपल का मेंबर था, मुझे पता है। और ये हुआ था कि फिर उनने जो एपिसोड कमून है उनने उस केस की डिसीशन को नहीं था माना, तो वो फिर केस जो स्टालेंस हाथ में गया था, वहां दो एक से स्टालेंस हाथ ने एपिसोड कमून को कहा था वो सही है। अब वो केस मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है और कमिंग डेज में उसका क्या कहते हैं एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट एक बड़ा ही क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड है कि कल्चरली वाइज देखा जाए तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हाथ देने से। अब देखते हैं कि जज सुप्रीम कोर्ट के उस केस में क्या फैसला देते हैं। फैसला आने वाला है और वो क्या कहते हैं काफी चीजों को बताएगा कि ये मुल्क की भी डायरेक्शन कैसे जा रही है और कल्चर और रिलीजन को क्या कहते हैं बंदा मिक्स नहीं करता कि मिक्स करता है। लेट्स सी के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैसला होगा इस केस में।
1: जबरदस्त, तो यहाँ तो आपको पता है अदनान कि सब चीज जो है कानून और सिस्टम के तहत चलती है, यहाँ तो कानून की हुक्मरानी होती है।
3: राजा साहब मैं वही कहूंगा, मैं राजा साहब ये भी तो कहूंगा ना कि यहाँ लॉ के हिसाब से चलता है, मगर मैं ये भी कहूंगा कि इस चीज के अंदर एक और चीज देखी जाएगी कि इंडिपेंडेंट राइट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज का फ्रीडम है। जब हर चीज का फ्रीडम है तो फिर आप किसी को मजबूर तो नहीं ना कर सकते कि वो शेकर हैंड करे। तो इसलिए इस केस के रिजल्ट और इस केस का फैसला जो आएगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाती है। क्योंकि जो जो मेरे लिए जो सरप्राइजिंग है वो ये है कि हाई कोर्ट ने, ठीक है उनकी डिसीशन है, मगर मेरा जो एनालिसिस है, मैंने जो बहुत ज्यादा चीजें देखी है, वो मैंने ये हमेशा देखा है कि जो एक फैसला होता है ना, लेस वो पीओ आदमी का भी हो, वो ज्यादातर सलेंस हाथ पे जाता है, दूसरा आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट पे जाओ तो वही फैसला ज्यादातर, मैंने 60% में यही देखा है, जो पहला फैसला होता है वो उस पे जाते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे इस फैसले का क्या होता है, क्योंकि मैं कल मेरी मुलाकात कुछ नए पॉलिटिकल से भी हुई थी आज कल सॉरी, तो मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कहते थे कि आप लोग, मैंने कहा मुझे तो मालूम था, पर मसला मेरा ये था कि मैं उस वक्त इन्हीं पील था कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, मगर ठीक है उस वक्त का जो प्रिंसिपल है और जो क्या कहते हैं जो लीडर थे स्कूल के, उनने इस फैसले में क्या कहते हैं उनका क्या कहते हैं साथ दिया था। और मैं भी आज ही कहूंगा कि ये किसी की आजादी में तो नहीं जाना चाहिए, मगर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसला इस पर देती है और क्या आगे का क्या सिस्टम बनेगा।
1: यहाँ तो केस जब चल जाता है तो फिर उसका फैसला होकर रहता है, फिर ये सालों नहीं गुजरते जो है ना, जब केस अदालत में चला गया, केस शुरू हो गया, तो उसका फैसला जब तक नहीं होता खत्म नहीं करते।
3: भाई राजा साहब ये केस 2019 का चला हुआ है और देखिए 7 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आया, और वो इसलिए आया क्योंकि ये केस बड़ा मुश्किल है, ये कोई आसान नहीं है फैसला देना, क्योंकि आप देखें कि हाई कोर्ट के अंदर स्प्लिट डिसीशन है, 2-1 की डिसीशन है, तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है अगले दिनों में।
1: चलें ये तो फैसला आ जाएगा चूंकि अब चल पड़ा है, तो अदनान अभी क्या फैसला हुआ, हुकूमत का कोई नई खबर आई?
3: राजा साहब हुकूमत की ये उनकी कोई डिटेल्स बाहर तो नहीं अभी आ रही, बस ये है कि ये रिकॉर्ड टूट जाएगा जो 42 दिन का था 2022 का, वो बस टूट जाएगा, और अभी तक तो नहीं कोई सिर पर बना डेनमार्क की गवर्नमेंट का, नेगोशिएशन चल रही है और होपफुली कमिंग डेज में क्या कहते हैं
1: तो मतलब है कि हिस्सा मिलने जा रहा है सियासतदानों को, जितना जुस्सा इतना हिस्सा तो ले लेंगे ये।
3: रिपीट करें एक मिनट, क्या
1: मैंने कहा? सियासत में होता है जितना जुस्सा इतना हिस्सा, जितनी पार्टी की मेंबरशिप होगी जो इताअत करेंगी पार्टी, डेफिनेट कुछ ना कुछ तो वो गैन करेगी, कमेटियां लेंगी, वजारत लेंगी, कुछ ना कुछ तो लेंगी।
3: हाँ वो राजा साहब वो देखिए वो तो जब कुबत की पूरा रखेंगे कौन ले और सारी चीजें बनेंगी, तो वो क्या कहते हैं एक अपना बनाएंगे, क्योंकि आप एक और एक एक एक ब्रेकिंग न्यूज जो चल रही है 3-4 दिनों से जो हमारे प्रोग्राम के बाद ही शायद हो गई थी, वो ये है कि डेनमार्क के अंदर हिस्ट्री के अंदर एक बड़ी अजीब चीज हो गई है। जैसे आपको मालूम होगा, काफी लोगों को पता भी होगा कि पार्लियामेंट में एक नई पार्टी आई थी जिसका नाम था पॉन 25, उसका खाली चेयरमैन बाकी रह गया, बाकी उसके जितने साथ 3 साथी आए थे, एक तो उसके बाहर एक्सक्लूड कर दिया था ना, अब उसका आखिरी साथी भी छोड़ गया। मतलब कि डेनमार्क की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि गवर्नमेंट बनी नहीं है तो एक पार्टी का खाली चेयरमैन रह गया।
1: मतलब पहले शो में ही फिल्म फेल होगी, पहले हफ्ते में ही,
3: पहले 40 दिनों में फिल्म फेल होगी, क्योंकि जिस बात पे वो मिलना कहते हैं ना, जिस स्लोगन से वो अंदर आया था और वो जो लेके आया था, वो ही क्या कहते हैं उसका ही क्या कहते हैं एक किस्म का पटाखा बज गया है। और मगर उसका फायदा भी देखा जाए तो मैं भी उसको ये कहूंगा कि उसका फायदा जो है ना, फायदा किसी को नहीं है, क्योंकि जो उसके मैंडेट है ना वो एक किस्म के मौत में था स्मिथ को जा रहे हैं। सो देखा जाए तो वो उस तरफ ही जा रहे हैं, और मॉडर्न मेनस्मेट जो है उसके बारे में भी क्या कहते हैं उसकी जो स्टाइल है ना, और जो जो जो, जो वो करता है वो ऐसा है कि वो मैनिपुलेशन में बहुत तेज है, क्योंकि उसके बंदा बात देखे ना और और और और, और, और चीजें देखे तो बंदा हैरान होता है कि वो बंदा क्या कर रहा है। तो आप देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या बनती है, क्योंकि मैंने ये पहली दफा हुआ है कि डेनमार्क की हिस्ट्री में भी देखा जाए तो जहां तक मुझे पता है कि डेनमार्क की जो फोल्केटिंग फास्टिडियम होती है ना, उसके अंदर नॉर्मल एक पार्टी का चेयरमैन नहीं बनता बैठता, ये इस बार खुद बैठ गया है। और ये क्या कहते हैं छलियन फॉरमैन है, क्योंकि पहला तो वेंचता का बैठा हुआ है ना फॉरमैन फॉर फॉल के चेंज, फिर हमारी पार्टी का आता है कि फर्स्ट बीस फर्स्ट नेस फॉरमैन, और फिर एस एफ का आता है, फिर ये आता है क्योंकि वो मैंडेट के हिसाब से आता है, और मैंडेट के हिसाब से तो वेंचता का नीचे आना था, मगर जैसे जैसे वो इस वक्त चेयरमैन है पार्लियामेंट का, अक्टूबर तक वो रहेगा जब तक नई पार्लियामेंट का क्या कहते हैं सेशन नहीं लगेगा, तो उतनी देर तक वो बैठेगा, और उसके बाद उसने कह दिया कि मैंने नहीं बांटता। और व्यूअर्स के लिए मैं एक और चीज व्यूअर्स को बता दूं कि जो कमूने हैं और जो हुकूमत है उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स बन रही हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं बन रही, क्योंकि उनकी जो बजट की निगोशिएशन शुरू होनी होती है फैंस मिनिस्टर में वो रुकी हुई है, क्योंकि जितनी देर तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी उतनी देर तक उनकी बजट की पेशियों की नहीं होगी, और उनको नहीं मालूम होगा कि हमारे बजट किस तरह के बनने हैं नेक्स्ट ईयर। तो दैट्स मीन कि काफी चीजें क्या कहते हैं रुकी हुई हैं, और जितना ही डिलेड गवर्नमेंट बनेगी उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं मसाइल जो हैं लोगों को होंगे। तो इसलिए कमून भी बड़ी स्पेंट है कि ये गवर्नमेंट काम बढ़ती है। मेरा गैस ये है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 14 डे के अंदर अंदर गवर्नमेंट तैयार हो जाए।
1: अदनान पहले बड़े कद्दावर शख्सियत आत होती थी कि बाहर पार्टी में वर्कर की बड़े जो हैं वो नाम वाले होते थे, जो खासकर यूथ होती थी उसका भी बड़ा नाम होता था। तो अब इस तरह के कद्दावर जो सियासतदान हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं, जो रह गए हैं उनकी मेरे ख्याल चलती भी नहीं है।
3: ए भाई देखिए हर चीज चेंज होती है टाइम के साथ, और यूथ है और काफी यूथ आगे आ भी सकता है और आना भी चाहता है, पर मसला ये है कि जब आप देखें कि सियासत में आना भी तो बड़ा पॉइंट चेंज हो गया हुआ है। अब देखिए आप 80s 70s में आए थे, आपको सबको मालूम होगा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर खुले फिरते थे, खुले सड़कों पे होते थे, जाके खुला करते थे। अनफॉर्चुनेटली एक साल पहले की बात है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क उसको एक सीक्रेट एड्रेस पर रखा हुआ, किसी को नहीं मालूम कि उसका एड्रेस कहाँ पे है। आप देखिए कि दुनिया कैसे चेंज हो गई हुई है, और ऑब्वियसली दुनिया की क्या कहते हैं रेपुटेशन भी बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मैं खड़ा हुआ 2025 में और लोग फवाह इतनी ज्यादा फैला रहे थे मेरे बारे में, जैसे फवाह फैली हुई है। अभी तक मैं जनवरी से लेके मई का मंथ 8 दफा मैं मतलब अपना घर शिफ्ट कर चुका हूँ। आपको लॉजिकल सोचना चाहिए कि कौन इंसान है जो 8 दफा घर शिफ्ट कर सकता है। जैसे मैं तो खुद हंसता हूँ कि लोग किस तरह की बातें करते हैं। तो सो जब आप यूथ को एक्सप्लेन करते हैं ना कि आप हिस्सा लें, आप ये लें, आप वो लें, तो वो बहुत सोचते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे जो फॉरेनर्स है ना वो बड़ा कहते हैं कि हम जब अपना कुछ करना चाहते हैं ना तो जो हमारे बुजुर्ग है ना वो कहते नहीं उस तरफ। तो मैं लोगों को ये ही कहता हूँ कि देखें अब आपको ये सोचना चाहिए कि 5th जनरेशन के तक पहुंच गए हम लोग, और जब हम 5th जनरेशन तक पहुंच गए ना तो जो 5th जनरेशन है ना उसको ने इस सोसाइटी के साथ चलना है, और जब उसने इस सोसाइटी के साथ चलना है ना तो फिर उसने उस सोसाइटी के साथ ही वोट क्या कहना के देना है। और राजा साहब यही चलता है। आज शाम को मुझे मैं मेरा था फरवरी तक ज्यादा नहीं था कि मैं शायद स्कूल बोर्ड जो होते हैं ये चीजें होती है शायद उससे अब अपना क्या कहते हैं जिम्मेदारी से शायद थोड़ा पीछे हट जाऊं, क्योंकि मैंने समझा था कि मैंने शायद अपना क्या कहते हैं एक किस्म का रोल कर दिया जो है। मगर मुझे फिर कुछ लोगों ने कहा, कहते हैं नहीं स्पेशल किड्स हैं, ये हैं, उसका थोड़ा बहुत अभी है कि अब काम, तो तुम थोड़ा टाइम और दे दो। तो फिर मैंने फैसला खुद किया, मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, वंस अगेन खड़ा होता हूँ, कामयाब हो गया, जितना काम मेरे से होगा मैं कर लूंगा, और जब मैं देखूंगा कि मैं नहीं कर सकता तो फिर मैं मदद कर लूंगा। क्योंकि मैंने कहा कि पिछली बार ये था कि मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ले ली हुई थी, जिस तरह से मेरा फिर दूसरा कंपेयर पैसा पड़ा था, और प्रॉबेबली मैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं करूंगा। मैंने कहा थोड़ी अर्से पहले मैं मदद कर लूंगा और फिर मैं जो है फोकस अपना पूरा सियासत की तरफ करूंगा। और इसी तरह से आपने मोटिवेट करना है यंगस्टर को, उनको क्या कहते हैं मोटिवेट करके आगे लेके आना है।
1: तो ये तो आप तो सियासतदानों से ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लोकल चूंकि आप काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखें कि शहर में पार्किंग के मसाइल, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, रोज़ नई इलेक्ट्रिक गाड़ी निकल आती है, पहले 5-5 साल बाद मॉडल तब्दील होते थे, कई गाड़ियों के 10 साल बाद तब्दील होते थे, अब लगता है कि हर रोज़ ये मॉडल तब्दील हो रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं और ख़रीदने वाले भी अच्छी खासी तादाद में आ गए, लेकिन पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है। जो कहते हैं कि टैक्सेस वगैरह जो हैं वो गाड़ियों के, आप उसका खुद अंदाज़ा लगा लें, पार्किंग मिलती नहीं शहर में, मिलती नहीं, इंश्योरेंस महंगी हो गई है, वर्कशॉप महंगे हो गए हैं, दांतों का इलाज महंगा हो गया, आप एक दाढ़ जो निकलवाते हैं तो उसका 2400 लग जाता है, अगर कमून किसी की मदद करती है वो भी तो स्टेट पर बोझ पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो पार्किंग वाला सिस्टम, इसी तरह ये दांतों वाला सिस्टम, आंखों वाले डॉक्टर का सिस्टम, एनकों का सिस्टम, ये एक सारी जो एक ये जो सरमायेदाराना गेम है, इसके पीछे कौन है?
3: राजा साहब इस पे दो चीजें हैं, ये एक यही तो बिगेस्ट डिलेमा है ना कि गवर्नमेंट नहीं मान रही, क्योंकि देखिए आप टेक्निकली सारे एक्सपेंशन और सारी कमोनली जो होती है ना उसको लेके चलना होता है। आपको खुद मालूम है कि नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में जनरेशन गैप चेंज आ रहे हैं, और जब जनरेशन गैप आ रहे हैं तो ये भी तो देखते हैं ना कि एक्सपेंशन को देख के और क्या कहते हैं पैसे कितने दे आएंगे। तो अब सर ये सारी चीजें देखी जा रही हैं और मॉडल्स देखे जा रहे हैं कि एक चीज फ्री है, दूसरी चीज इतनी महंगी है, तीसरी ऐसे है, तो ये तो सारी ऑब्वियस चीजें देखी जाएंगी। गाड़ियों का देखा जाए तो गाड़ियों का ये था कि ये गाड़ियों का ये था कि जब ये क्या कहते हैं लेट पहने होगी, पूसा होंगी, ट्रेनें होंगी, इससे कमी होगी, मगर अभी तक तो लग नहीं रहा कि कमी होगी, मगर अभी तो ये चीजें शुरू हुई हैं। हो सकता है कि 1-2 साल बाद जब ये अपना एनालाइज करें, क्योंकि अभी तो इन्हें अपना सारा एनालाइज पार्किंग का और ये सारा बनाया था कि लेट पहने चलेगी तो थोड़ी बहुत क्या कहते हैं कम लोग गाड़ियां लेके जाएंगे, ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा चीजें होंगी, और हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं इन चीजों में, क्योंकि जहां पे गाड़ियां खिलारनी होती हैं, जहां पे पार्किंग इश्यूज बने हैं, वहां पे टेक्निकली पार्किंग के इश्यू इसलिए बने हैं क्योंकि लोग लेट पहने इस्तेमाल करने लग पड़े हैं, मगर इवन पे लेट पहने इस्तेमाल करने लग पड़े हैं मगर फिर वहां पे तो गाड़ी के कोई सोल्यूशन लेके आए ना। हमारे अब तो एक दो चीजें हैं ग्रोस तो में, मैंने एक दो दो चीजें देखी हैं जहां पे ये लेट पहने के चलने का सिस्टम बना, और ये ऑब्वियसली एक चीज है जिस पे हम डेफिनेटली सियासी पार्टी और जो सियासी क्या कहते हैं लोग हैं वो वो वो वो इस चीज को देखेंगे और क्या कहते हैं गौर करेंगे और इन इन इन चीजों पे क्या कहते हैं काम भी करेंगे और सोल्यूशन लेके आएंगे, और ये नहीं कहेंगे कि गाड़ियां कम कर दो, क्योंकि गाड़ियां कम करने से फिर दूसरे सोल्यूशन लेके आने पड़ते हैं। ताकि इसमें और एक राज्यसभा इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, मसला ये है कि जब आप गाड़ी लेके गाड़ी को आप तब्दील करना चाहेंगे ना तो फिर आपने ये भी देखना है कि जो आप ऑफली ट्रांसपोर्ट है उसको भी आपको थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि आप टेक्निकली देखे ना तो गाड़ी आपको सस्ती पड़ती है ऑफली ट्रांसपोर्ट से, तो आपने गाड़ियां कम करनी है तो फिर आपने ऑफली ट्रांसपोर्ट क्यों बंद कर सॉरी महंगी कर रहे हो। तो ये चीजें जो होती है ना ये थोड़ी बहुत क्रॉसिंग बंदा कह सकता हो गया हुआ है, इन कंप्लीटली चीजों को आपको गौर करना पड़ेगा। दूसरा ये भी होता है कि जैसे मुझे बड़े लोगों ने एक सवाल किया है मैं जब जाता हूँ मुझे बड़े लोगों ने सवाल किए, कहते हैं आप बार बार सिस्टम क्यों बदलती है, कि जिससे जो सॉफ्टली सिस्टम होती है उसमें आप बार बार चीजें चेंज कर देते हैं जो बुजुर्गों के लिए और बड़े लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बात सिंपली बात बताऊं, ये जो बुजुर्ग हैं इनके लिए इनने ट्रेन पे जाना और बस पे जाना होना, ये जो नया सिस्टम ला रहे थे ना इनके लिए इतना मुश्किल था ना कि उसके लिए इनने फिर सोच के थोड़ा ऐसे कौन ये जो चीजें हैं थोड़ी आगे की है, क्योंकि इनको पता ही था चल रहा कि बुजुर्गों को बोर समझ नहीं आनी, तो कभी कभी ये ऐसा काम कर देते हैं कि मुझे खुद नहीं समझ आती कि जो बना रहे होते हैं वो ये नहीं सोचते कि इसमें क्या कहते हैं फौतेल कितने हैं या उलेम्पा कितने हैं। मुझे तो लगता है वो खाली फौतेल देखते हैं और उलेम्पा नहीं देखते, तो फिर थोड़ा ज्यादा नुकसान हो जाता है।
1: पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हर काम बचत बचत बचत बचत, इससे जो है मामलात ख़राब ही होते जाते हैं। उसके बाद आप देखें कि ज़्यादातर अब गैर मुल्की जो है वो डेंटिस्ट डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, जिस तरह एक जैसे लाइन लग जाती है ना, तो डेंटिस्ट डॉक्टर बनना चाह रहे हैं कि शायद इसमें कोई इस तरह का सिस्टम कुछ ज़्यादा है, सहूलियात ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा हैं, या कम्यून से जो है वो जो पेंशनिस्ट हैं या जिनको रिबेट्स वगैरह मिलती हैं उनको, तो डॉक्टर को तो पूरी तनख्वाह मिलती है, पेशेंट को अगर फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अदरान जब तक कम्यूनों में लोग जाएंगे नहीं, सिटी काउंसलर बनेंगे नहीं, तो ये तब्दीली नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि वो पार्टियों के मेम्बर बने, इलेक्शन लड़े, कम्यून में जाए, तो फिर हालात ठीक होंगे। जो आप क्या कहेंगे?
3: ये बात तो करेक्ट है दादा साहब, जितने लोग हमारे क्या कहते हैं ना कामयाब होंगे और हम लोग भी अंदर आएंगे, खाली हम नहीं, ये मैं तो कहता हूँ ये डायनेश हो और जरा मर्जी हो, जब तक ये लोग अंदर बढ़ के काम नहीं ना करेंगे उतनी देर तक एक किस्म की तब्दीली नहीं आती। मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़े लोगों ने ये मैंने जैसे अभी आपकी जिस चीज की एग्जाम्पल दी है, मुझे परसों चौथ पता चला तो मैंने मुझे फोन करके कहता, मैंने कहा देख हर चीज का जब आप मेंबर होंगे आपको एक्सपीरियंस का पता चलेगा, आपको चीजों का पता चलेगा, आपको अंदाजा होगा और फिर आप लोग सीखेंगे, क्योंकि मैंने कहा जब आप लोग सीखेंगे जब आप अपनी आवाज उठाएंगे तो क्या कहते हैं फायदा होगा और चीजों का क्या कहते हैं एक एक नतीजा निकलेगा। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहली दफा खुश हुआ हूँ कि मैं जब 2022 में ये मेरे बेटे के स्कूल में मैंने इलेक्शन लड़ा था ना, मैं वही गैर मुल्की था जो लड़ा था, अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरे स्कूल में भी बैठा हुआ था, तो सो मैंने प्रॉपरली 100% इधर एक अपने बेटे के स्कूल में ना देख सका, क्योंकि बेटी के स्कूल में घुस गया था, तो मैंने फिर टाइमिंग की वजह से इनको कहा ठीक है मैं यहाँ पे भी सप्लेंट की तरह रहता हूँ। आज मेरे साथ दो गैर मुल्की और खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन एक आ गैर मुल्की ने मुझे कहा कहते हमने जब देखा कि तुम हो तो फिर हमें भी थोड़ा क्या कहते हैं मिला हौसला कि हम भी आए इस तरफ, तो मैंने कहा मेरा मकसद ये था कि आगे लाइन में जाएं, और मैंने उसे कहा मैंने कहा ठीक है तुम आ गए हो, मैं बड़ा खुश हूं कि तुम आओगे तुम काम करोगे, क्योंकि इससे मुझे फायदा होगा कि मैं क्या कहते जो मेरा मिशन था 2022 में 2018 में था कि और लोग भी आए, मैंने कहा मेरा काम ही वो है, मेरा काम है कि लोग और आए और जिम्मेदारी उठाएं, मैं अकेले जो है जो कर सकता हूँ वो मैं अकेले नहीं कर सकता, जब आप सारे मेरे साथ आओगे काम करोगे क्या कहते हैं मदद करोगे, ऐसे हमारी चीजें क्या कहते हैं उठाई जाएंगी। जैसे मैंने आपको कहा है कि मैंने मेरे बेटे ने आके मुझे कहा कि हम मस्जिद में जाना चाहते हैं, मुझे उसकी मैंने उसकी स्कूल की टीचर का किया, उसके बाद मुझे फोन आया कि तुम और क्लास में जाना है, मैंने फिर उनको कहा ये क्लास है, वो कहते हैं जितनी मर्जी क्लास है भेजो तुम बस लेते जाओ हम लेते जाएंगे ये तुर्की मस्जिद वाले, मैंने कहा वो मुझे मैं मिला दोनों को जा कहते हैं भाई तुम काम कर रहे हो हम जितना इनको दिखाएंगे बच्चों को दिखाएंगे तुम्हारे को उतने ही हम इंटरेस्ट होंगे, ये भी इंटरेस्ट होंगे, हमारा कल्चर बाहर आएगा, तो ये जिस तरह डिबेट मुसलमानों के बारे में आती है हम ऐसे ही चेंज करेंगे इसको कि हम उतने बुरे नहीं है जितने आप समझते हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारा सब कुछ खुला हुआ है, हमारा सब कुछ ओपन है, आप लोग ये जो शुरू हो जाते हैं कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया हमने ये कर दिया, जितनी देर तक हम अपनी
1: लेकिन
3: चीज
1: अदनान
3: नहीं
1: एक सबसे
3: दिखाएंगे।
1: बड़ी जो चीज़ सामने आ रही है कि हमारे गैर मुल्की लोग जो है ना वो अब रहते रहते 50 साल हो गए, आगे उनकी नस्लें तीसरी नस्ल जा रही है, तो जब आप किसी निज़ाम को चैलेंज करते हैं तो उसके लिए तो फिर बहुत सारा नॉलेज चाहिए।
3: भाई हमारे हमारी जो नेशन के पास बहुत नॉलेज है, ये कोई डाउट नहीं, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, हम बहुत सारी फाइट कर सकते हैं, हम बस अपने आप को क्या कहते हैं, चाहे ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम चाहे ना तो इम्पॉसिबल से पॉसिबल कर सकते हैं।
1: लेकिन उसके लिए करेक्टर की भी जरूरत है ना।
3: हाँ, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए। मैं अपना नहीं कहता, मेरे लिए नहीं है, मैं आपको कहूंगा कि मैंने हर फोरम पे जितना हो सके, मैंने ये जो हेलसिंगा में वाक्य है उसके बारे में किए, मुझे लोगों के आए भी हैं, बहुत बहुत बुरे जवाब आए हैं। और एक दिन मेरा बेटा बैठा हुआ था, मेरे साथ बैठा हुआ था, ये मेरी जनरेशन है, वो बैठा हुआ था, तो मैं बात कर रहा था तो उसको समझ आ गई, वो देखने लग पड़ा, तो उसने जाकर मेरी वाइफ को कहा कि मेरी वाइफ कहती है तुम परेशान ना हो, कहता वो क्यों, कहते बाबा को कोई असर नहीं होना, तो देखना वो नीचे आएंगे, वो भूल गए होंगे। मैं बैठ के खाना खा रहा, सब कुछ कर रहा, कहता कहता दूसरे ने मुझे उसके स्कूल का टीचर का आया, कहती है तुम्हारा बेटा तुम्हारी जी तरह जाना चाहता है। तो मैंने कहा यही तो फर्क है, क्योंकि वो इसलिए जाना चाहता है कि वो अपने बाप को देख रहे हैं कि बाप पे तो कोई असर नहीं हो रहा, वो तो बैठा हुआ, वो चुप है। मैंने मुझे उन पूछा कहते तुम्हें तो खौफ नहीं लगता, मैंने कहा देख मुझे वो कुछ कहेगा ना कुछ कहेगा तो मैंने एक ही काम करना है, मैंने 154 नंबर फोन करना है, मैंने उन्हें कहना ये बंदे ने ये किए, बाकी वो जाने और 114 नंबर जाने कि वो क्या है। मैंने कहा मुझे पता है कि मैंने एक 114 फोन किया, उन्हें उसी वक्त एक्शन ले रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैंने कहा उस बेवकूफ का जा रहा है कि जिसको ये नहीं पता कि मुझे कहेगा तो ये कानून उस पर लग जाने हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों परेशान हूँ, मैंने कहा यही तो फ्रीडम है इस मुल्क का कि हमें पता नहीं है कि हमारा फ्रीडम कहाँ तक है। मैंने कहा हमारा फ्रीडम बहुत तक है और यही हमें लेके चलना चाहिए। हमें लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर हम जब हिम्मत रखेंगे अपने बच्चों की, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन के बच्चे हैं, जाने वाले हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई होता ही नहीं है। मैंने कहा मैंने असर इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं ले लूंगा तो जो अगली जनरेशन है वो पे डर जाएगी, हम एग्जाम्पल बनेंगे तो आगे लोगों में हौसला आएगा ना।
1: बिल्कुल अदनान आपने बजा फरमाया। अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
3: मेहरबानी आपकी, तरफ से मुझे अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो कि अपना नुक्ता नज़र, अपना तज़िया पेश कर रहे थे, ख़बरों को एनालाइज कर रहे थे, सिस्टम को एनालाइज कर रहे थे। सामान नाज़रीन, हमारा किसी के साथ मुतफिक करना ज़रूरी नहीं, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आपके लिए दर आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।